फिर जिन लोगों ने नादानी से बुरा काम किया फिर उसके बाद तौबा की और नेकुकार हो गए, तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेकुकार हो जाने के बाद बख्शने वाला और उन पर रहमत करने वाला है।

والشمس تجري لمستقر.

0: और दहशत गर्दाना चेहरा बेनकाब। रावला कोर्ट में पुलिस एहलकारों पर हमले और
1: लाश।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

sektörü şeffafiyet fırmalarına.

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

अप्लाई करते हुए कितना जरूरी है कि उस जॉब के अकॉर्डिंगली आप उस रिज्यूमे को तैयार करें. विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस शो. अभी मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. विल बी राइट बैक. दिस इज राइजिंग पाकिस्तान. स्टे विद अस.

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Tuesday 23rd of Zilhijjah, June the 9th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The President, during a meeting with the Prime Minister in Islamabad, has emphasized prioritizing public welfare, provincial rights and economic stability in the federal budget. The Prime Minister has urged all the sides in the Middle East conflict to exercise restraint for peace. The Chairman Senate has called for following Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to address the challenges being faced by the country. The Minister for Education says strengthening educational cooperation between Pakistan and Korea will help prepare a highly skilled Pakistani workforce. Pakistan has issued over 700 visas to pilgrims from India to participate in the annual festival relating to Guru Arjan Dev Ji.
1: 101 FM.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: किसी भी किस्म की ज्यादती जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। यह पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
4: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: Entertainment, ho ya updates, yeh hai tumhari har mood ka dost.

0: आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक।
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मुट्ठी खोल। आंखें मीच, फूंक मार और जो मांगना है मांग ले।
1: क्या हुआ?

0: आप हुई ले।
1: This is 101% pure.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन। हम
3: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल
1: दिस इज एफएम
2: 101। 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदन वफाकी बजट में अवामी फलाह बहबूद, सूबाई हुकूक और इक्तसादी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया है। अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से मुतालबा किया है कि वह दहशतगर्दों के खिलाफ काबिले तस्दीक और नाकाबिले तंसीख इकदामात करें। थिएटर, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार जमील फखरी की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution. 101 FM.
1: सुनते रहिए FM 101 101.

सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में। 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।

0: ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈ
1: This is FM 101.

0: drive carefully, okay?
1: Okay.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: This is FM 101.1.
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Music sucks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: गेट रेडी फॉर नॉन स्टॉप हिट्स इट्स बैक टू बैक इंग्लिश बैंगर्स एवरी डे फ्रॉम 3 PM टू 4 PM ओनली ऑन FM 101। From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way, right here on FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: Thank you.

0: delle sonette, beh.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: तुम्हें अगर रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: सुनते रहिए FM 101.1 सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: This is FM 101.1.
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
6: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: एक नया उम्मीद है सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: This is FM 101.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: This is FM 101.1.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan.
6: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
7: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
7: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.

0: Kids, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज़, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सुर और संगीत

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
6: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
7: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
7: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: जनाब आज का ये जो शो है दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड बहुत अमेजिंग सा प्रोग्राम होने वाला है. उसकी वजह यह है कि हमारी आज की जो गेस्ट हैं, हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज़ सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी. और आज आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो स्टाइल जब कोई आर्टिस्ट हमारे पास होता है ना, मल्टी टास्किंग, यानी अपने एक टैलेंट के साथ दूसरा टैलेंट और बेशुमार टैलेंट लेके जब हमारे सामने आता है तो बहुत दिल में खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान इज़ सच अ फर्टाइल कंट्री, कि अल्लाह ताला ने ऐसे टैलेंटेड लोगों को नवाजा है हमारे मुल्क को, कि एक वक्त में इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. और आज की जो हमारी मेहमान है ये सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं. मैं आज चूँकि मैंने इसीलिए एक्साइटमेंट हूँ कि हम चूँकि म्यूज़िक के एरा में जहाँ पे हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पे हम म्यूज़िक लवर्स भी हैं. आज के दौर में थोड़ा सा म्यूज़िक बदल गया है, ओरिजिनल मौसीकी जो है ना उससे हम नापेद होते जा रहे हैं. मौसीकी अगर कोई समझता है तो उसको इस बात का एहसास होगा कि असल में मौसीकी क्या है, गाना क्या है, गुलकारी क्या है और उसका असलूब क्या है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. आज का शो उन लोगों के लिए जिनको गाने का शौक़ है, जिनके अंदर टैलेंट है, जो सिंगिंग करना चाहते हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, उस आवाज़ को कैसे निखारना है, उस आवाज़ को कैसे संवारना है, उस आवाज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, उस टैलेंट को कैसे समझना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जनाब हमारी आज की मेहमान इस वक्त हमारे साथ तंजीला मुग़ल हैं. आप सिंगर हैं और ऑथर हैं दो किताबों की जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है. इट्स अ वंडरफुल बुक्स तंजीला मुग़ल की इफ़ यू आर ए मैन, ये जो किताब है इट्स आप लोग इसको पढ़ेंगे. आई थिंक मैंने अभी इसका जो जब टाइटल पढ़ा आई एम सो इम्प्रेस. वर्सेज हैं बड़े ज़बरदस्त, 11th पैराडाइज. सो मैं बढ़ूंगा अपनी मेहमान की जानिब. वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम तंजीला, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच.
0: वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान.
1: थैंक यू.
0: आज आप एक ऐसे इदारे में, चूँकि आपका आप एज ए सिंगर गा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी पैशनेट हो के एज ए प्रोफेशनली, रेडियो पाकिस्तान आगे कैसा लगा आपको?
1: बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी सारी मिथ्स भी सुनी हुई थी और काफ़ी सारी कहानियाँ, टेल्स ऑफ ग्रेट सिंगर्स,
0: लेजेंडरी सिंगर्स हैं.
1: यस.
0: और वो लेजेंडरी जो आपने बायर वॉल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा होगा.
1: एग्जैक्टली.
0: और हमारे पास ना एक दफ़ा एक बहुत बड़े सिंगर आए और उनका ताल्लुक मुसाया मालिक से था. एनी वाज सो एक्साइटेड जब वो एंटर हुए, बड़े जज्बाती भी थे, रोना शुरू हो गए, जहाँ जाए रोना शुरू कर दें. और उनके रोने का आलम यह था कि जिस वो बिल्डिंग में जाए उसको चूमे, जूते उतार के वो रेडियो का विज़िट कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि रेडियो पाकिस्तान जो है ना, मैं किसान का बेटा था, हल चलाता था और काम कोई आता नहीं था, तो सारा वक्त हल चलाना और रेडियो पाकिस्तान को ट्यून कर देना. मैडम मलका तरम नूझा मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद ग़ुलाम अली खान साहब कहते हैं मेरे उस्ताद हैं, मेहदी हसन खान साहब मेरे उस्ताद हैं. तो जिन लोगों ने मौसीकी को समझा है उन्होंने सीखा भी है. तो आप एज ए सिंगर, मैं चूँकि आप यहाँ पर बैठी हैं, चूँकि डिजिटलाइज्ड हो गया है, चीज़ें थोड़ी ऑटोमाइज हो गई हैं, वाई यू आर इन क्लासिकल म्यूज़िक, आपने इसका चुनाव क्यों किया?
1: क्लासिकल मेरे ख्याल से एक प्योर फॉर्म होती है और बेस होती है म्यूज़िक की, सिंगिंग की. तो मेरे ख्याल से क्लासिकल की अगर लोगों में इतना स्टेमिना और हिम्मत नहीं है कि वो प्योर क्लासिकल सीख सकें तो थोड़ा बहुत ज़रूर उसकी नाउहाउ होनी चाहिए कि सारे गामा पाधा निसा आखिर है क्या. क्योंकि सब राग में नोट्स तो यही होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, लेकिन यही नोट्स हर राग में जाकर डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? वो क्या वजह होती है कि हर राग हमें डिफरेंट महसूस होता है? तो वो उसकी मीट होती है, वो उसके कुछ शुरतियाँ होती हैं कि किस नोट को टच करके जब आप आएंगे तो फिर कौन सा राग बनेगा. यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मैं सीखने नहीं गई थी, मैं तो वैसे ही बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए गई एक जगह. तो वहाँ पे जो रूम था वो भरा हुआ था स्टूडेंट से और हर एज के लोग थे. जिसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, और मैं उन लेजेंडरी सिंगर का, उस्ताद जी का नाम तो नहीं लूँगी, मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन मैंने देखा और मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी हुई कि एक घंटे की शायद क्लास थी और उस एक घंटे में उन्होंने कोई 300 बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सारे गामा पादा नीसा सारी धापा मागा रेसा का रट्टा लगवाया। और आप सारे गामा पादा नीसा सानी धापा मागा रेसा को आप लगे रहें, 100 साल आप लगे रहें, मेरे ख्याल से 5 सेंचुरीज तक आप लगे रहें, आपको नहीं पता चलेगा कि असल बात क्या है, गायकी क्या बनाती है। अब जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में या उर्दू में, अगर वो अलग अलग होंगे ना तो वो मीनिंगलेस होंगे, वो दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर मीनिंग क्रिएट करते हैं। इसी तरह से सारे गामा पाधा नीसा का भी यही कह लें कि एक वो है कि सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मगर ऐसा, ये अकेले कुछ भी नहीं है, ये दूसरे नोट्स के साथ मिलकर कंप्लीट होते हैं।
2: क्या बात है जी,

0: बिल्कुल ऐसे ही है जी, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, कहते हैं कि दिस इज़ द बेस ऑफ एवरी म्यूज़िक. जैसे आपने फरमाया सारे गामा पाधा नीसा, बेस तो यहाँ से ही होती है.
1: जी जी.
0: राग जो है इनमें से गाने निकलते हैं.
1: जी जी.
0: अच्छा, कभी ऐसे देखे हैं ना कि बहुत से गानों के जो तर्ज होती है वो एक दूसरे से मिलती है. हमने अक्सर नोट किया है कि एक जैसी तर्ज नज़र आ रही होती है. उसकी वजह राग होते हैं, क्या होता है वो?
1: तर्स नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी अगर एक राग है, जैसे राग यमन है, तो अगर आप उसकी सभी धुनें सुनेंगे तो वो सेम नहीं होंगी. असल में हर राग के कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो उस राग को उजागर करते हैं. तो उस वजह से अगर आपने थोड़ा बहुत किसी उस्ताद के साथ सिटिंग की हुई है तो फिर आपको थोड़ा मालूम पड़ सकता है कि ये फला राग है. वैसे अगर आपने बिल्कुल नहीं इसके बारे में कुछ भी सुना या देखा या सीखा तो फिर आपको नहीं पता चल
0: अच्छा,
1: सकता.
0: तंजीला, ये जो म्यूज़िक है, अब थोड़ा सा म्यूज़िक चेंज हो गया. अब हमने देखा कि आवाज़ का इस्तेमाल कम है और म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा होने लग पड़ा है. अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा दूसरा वॉइस के अंदर जो क्लैरिटी है, क्वालिटी इन्हांसमेंट, दैट इज़ अवेलेबल. अब म्यूजिक बहुत आसान हो गया है, गाना बहुत आसान हो गया है. किसी के पास सुर नहीं है, थोड़ी सी अगर रिदम है लेकिन सुर नहीं है, लेकिन वो भी गा सकता है.
1: मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि शायद मैंने इतना सीखा है, मैंने इतनी मेहनत की है, तो अगर मैं भी इस बात से एग्री करूँगी तो मुझे खुद को ही बुरा लग सकता है. देखिए, AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किसी हद तक आप यकीन कर सकते हैं. मैंने एक दिन ChatGPT से ना एक सवाल किया, वो भी रिसेंटली, मुझे कुछ 6 महीने पहले किसी ने कहा कि आप ChatGPT यूज़ नहीं करती, तो मैंने कहा नहीं. तो कहते हैं दुनिया चांद पर पहुंच गई है ChatGPT को यूज़ करके, लोग पता नहीं कौन कौन से मार के मारे और आप यूज़ नहीं करती. मैंने कहा नहीं. तो अब पहली बार फिर मैंने डाउनलोड किया और मैंने उससे ना पूछा. अच्छा, मैंने अपनी जो शौक से रिलेटेड उससे सवाल पूछा कि मुझे फ्ला राग का चलन बताएं. अच्छा. उन्होंने ChatGPT ने गलत बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या जो सॉफ्टवेयर है वो किसी हद तक आपको सिंगर बना सकते हैं, लेकिन जब आप लाइव आएंगे तो फिर तो पता चलेगा.
0: नहीं, दैट्स ट्रू. ये तो मैंने खुद लाइव में बहुत से लोगों को देखा है. इवन बहुत से मैं सिंगर्स को जानता हूँ जो लाइव गा ही नहीं सकते,
1: और जो सुरीले होते हैं, सुर में होते हैं, वो तो हमिंग भी करेंगे तो सुर में करेंगे ना. देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुड सिंगर एंड बिटवीन एन एमेच्योर सिंगर.
0: अच्छा, कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं राग, कितनी देर?
1: मैं हर वक्त म्यूज़िक में होती हूँ, हर वक्त. मुझे म्यूज़िक के इतना ऑब्सेशन है, मुझे इस बात का शौक नहीं है, ऑब्सेशन नहीं है, या ये एक मेरा फाइनल टारगेट नहीं है कि मुझे फेमस ही होना है. लेकिन चूँकि मैं काम ऐसा कर रही हूँ तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जहाँ तक पहुँचे मेरी आवाज़, मेरे लिए तो अच्छा है.
0: अच्छा, आप का जो जॉनर है इससे टोटली डिफरेंट. आप क्लासिकल
1: जी
0: को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, विच इज़ वेरी गुड. और मैं, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन और खुशी वाली बात भी कि आज के दौर में भी ऐसे सिंगर्स हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक जो है ना उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उसको सीख भी रहे हैं और उसको मतलब पसंद भी करते हैं और फिर उसमें गाते भी हैं, उस पूरे सुर के अंदर आके गाते हैं, विच इज़ वेरी रेयर, विच इज़ वेरी रेयर. इसकी स्ट्रगल ज़्यादा है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसमें आपका जिसे कहते हैं ना कि आपका टेक ऑफ करना, इट विल टेक टाइम. तो आपको नहीं लगता है कि अब तो सिंगर ओवर द नाइट आए, गाने शाने थोड़ा सा क्लीनिंग करवा ली, साफ सुफ करा
1: करते
0: के,
1: हैं
0: और बना ली?
1: हाँ, मैंने अपने जो ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं उनको भी रिकॉर्डिंग करवाते वक्त, और जो मैंने कवर सॉन्ग्स गाए हैं जिसमें मोस्टली मैंने इंडियन सॉन्ग्स गाए हैं, तो मैं अपने रिकॉर्डिस्ट का जीना हराम कर देती थी कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट मुझे पसंद नहीं है, इसको यहाँ से हटाएं. इवन अगर एक गाना इंडियन एक सॉन्ग है, ये ज़िंदगी उसी की है, ओके तो उसमें वो गाना 4 रागों पर बेस्ड है,
0: ठीक है.
1: उसमें एक और राग मैंने ऐड किया, क्योंकि आपके पास इतना, हाँ, आपके पास इतना एक समझ रहे हैं कि कैपेसिटी होती है. कुछ राग करीब करीब के राग होते हैं, उनके फ्रेजेस भी आपस में मिलते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. तो वो उसमें मैंने राग जो ऐड किया राग मधुवंती, क्योंकि उसके दो वर्जन्स थे, एक हैप्पी वर्जन आपने सुना ही होगा, एक हैप्पी वर्जन है, एक सैड वर्जन है। तो जब हैप्पी वर्जन से वो सैड में आता है ना, तो उसके स्टार्ट में मैंने राग मधुवंती, क्योंकि राग मधुवंती एक बहुत ही उदासी का राग है, तो वो जब मैंने वहाँ से उसका स्टार्ट लिया, मधुवंती जी जी, तो उससे जब मैंने उस सैड वर्जन का एक स्टार्ट लिया हुआ है, वो मैं अपनी तारीफ क्या करूं, लेकिन एक मेहनत है इसके पीछे, बहुत मेहनत है। इसके बावजूद भी मैं डरती हूँ, म्यूज़िक से बहुत डरती हूँ। मैं जब भी हारमोनियम पे बैठती हूँ रियाज करने, तो भाई सबसे पहले तो कानों को हाथ लगाते हैं हम, तो
0: मुश्किल काम है,
1: बहुत मुश्किल काम है।
0: अगर आप इसको समझ जाएं तो मुश्किल है,
1: बहुत।
0: अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप स्टेज पे छलांगे ही मारते रहेंगे, भागते रहेंगे,
1: फिर आप
0: हाथ ऊपर करते रहेंगे,
1: इसी गलत फहमी में रहते हैं। और मेरे ख्याल से गलत फहमी रहनी चाहिए, वरना तो आप हमेशा परेशान रहेंगे कि भाई मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं।
0: अब हमारे जो सुनने वाले हैं ना, वो बड़ा उनमें क्यूरियोसिटी आ गई है कि तंजीला हमारे साथ हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, और वो इतना अच्छा गाती भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपका जो ट्रैक है हम उसको चलाएं, फिर उसके बाद आपसे लाइव सुनेंगे हम। आप लाइव सुना लेंगी ना?
1: मैं देखती हूँ।
0: अच्छा, ये जो लाइव गाने वाले होते हैं ना, अब बड़े यूनिक से और बड़े कम लोग रह गए हैं।
1: नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब उनके प्रोग्राम में गई ना, वहाँ पे उनकी जो मैनेजमेंट में जो लड़की थी, उसने मुझसे आके पहले पूछा, प्रोग्राम से पहले पूछा कि आप लिपसिंग करेंगी कि आप लाइव गाएंगी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मौजूद जो गाने हैं ना, वो लोग सुन लेंगे, मुझे लाइव जलवे दिखाने। मैंने 3 गाने गाए लाइव।
0: अरे वाह, तो मेरे ख्याल में एक लाइव हमें सुना दे पहले।
1: जी जरूर, लेकिन आप पहले मेरा
0: आपका ट्रैक इसके बाद चलाते हैं, क्या कहते हैं आपने पहले ट्रैक ये सुनना है। अच्छा ले, अच्छा जी, हम पहले एक ट्रैक चलाएंगे एंड विच इज़ कॉल्ड प्यार है अधियारा। अच्छा, प्यारा है अधियारा, क्या बात है जी। मैंने ये वैसे देखा है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और आपने गाया तो बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, ज़बरदस्त है, बट प्रोडक्शन इज़ वेरी नाइस मस्त से। ये बाकायदा आपने टीम हायर की होगी?
1: सब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हमने करवाए थे, और ये डिफरेंट सिटीज़ से करवाए थे। ये शिरोज हैं, जी जी, शिरोज हुसैन कराची में होते हैं, उनसे हमने इसमें सितार करवाया।
0: वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ तंजीला मुगल हैं, और उनका ये ट्रैक जो हम चलाने जा रहे हैं, आप लोग भी सुने, इंजॉय कीजिएगा, और हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान FM 101। मुझे कहते हैं फरहान खान।

0: रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई।
1: अरे वाह क्या कहने है,
0: जिंदगी की राह में।
1: क्या बात है जी, क्या कहने हैं जी, बहुत खूब ज़बरदस्त जी, और बड़ा ही ज़बरदस्त आपने इंतखाब किया। मेहदी हसन खान साहब को गाना कोई आसान टास्क नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है।
0: बिल्कुल जी, लेजेंड्स को गाना इतना आसान होता ही नहीं है।
1: हाँ, और ख़ास तौर पर मेहदी हसन खान साहब, फिर मैडम नूरजहाँ, गुलाम अली खान साहब।
0: मैडम नूरजहाँ का गाना तो सबसे ज़्यादा रेयर है।
1: हाँ,
0: ऐसा कोई गा नहीं सकता। चेस्ट से गाना बहुत मुश्किल गाना है, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो थोड़ा दूसरी तरह का गाना गाते हैं।
1: अच्छा, अभी हम रीमिक्स वर्जन्स भी देख रहे हैं कि मैडम की आवाज़ के गाने गाए गानों को भी मुख्तलिफ सिंगर्स गा रहे हैं। पता नहीं, वो रचाव हमें नज़र नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। शायद मैडम को जो सुनने वाले हैं, मैडम से समझने वाले हैं या मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि किसी और आवाज़ में, किसी और रंग में, बेशक जितना भी अच्छा म्यूज़िक क्यों ना हो, वो रचाव नहीं आता। इसकी क्या वजह है?
0: शायद उस तरह का रियाज नहीं होता। मैडम जी का तो एक रियाज था, और जो उनका एक स्टाइल था, मैंने आपको बताया ना, वो बहुत रेयर है। पूरी दुनिया में जो म्यूज़िक, जो सिंगिंग की जाती है, वो थोड़ी और तरह की है। उसको आप कह सकते हैं कि थोड़ी ईजी फॉर्म है, जिसमें मुर्गियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लेकिन जो मैडम जी के गाने हैं, उनमें उन वो गज़ल्स जो उन्होंने ख़ास तौर पे थोड़ी
1: हाँ डेफिनेटली उनका एक
0: बाद में गाई हैं, उसमें नज़र हुसैन साहब की जो उन्होंने गज़लें गाई हैं, उनमें उन गज़लों का जो चलन है वो बहुत मुश्किल है।
1: अच्छा, मैं थोड़े से क्विक क्वेश्चन आपसे करूँगा न्यूज़ ब्रेक पे जाने से पहले। एक सिंगर को कितनी देर रियाज करना चाहिए अपने गले को पकाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, कितनी देर दिन में कम अज़ कम?
0: कहते हैं ना कि एक शेर याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, लेकिन वो शेर इस वक्त यहाँ पे बनता है। ज़िंदगी में ज़ाहिर है और भी मामलात होते हैं, लेकिन
1: ज़िंदगी में और भी कम है मोहब्बत के सिवा।
0: नहीं नहीं, ये नहीं था, वो कुछ और था।
1: नहीं, वैसे आप कितनी देर रियाज करती हैं?
0: मैंने आपको बताया, मैं हर वक्त म्यूज़िक में ही होती हूँ, ऑल टाइम।
1: नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस जिसको कहते हैं ना, हारमोनियम के ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करना, वो कितनी देर कम अज़ कम?
0: जब आप स्टार्ट करते हैं उस वक्त तो 6 to 7 hours लाजमी करनी चाहिए प्रैक्टिस। उसके बाद आप देख रहे हैं, सुबह का जो रियाज है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और शाम का रियाज भी बहुत ज़रूरी होता है।
1: ठीक है, अच्छा, उस्ताद का होना म्यूज़िक में कितना ज़रूरी है? कि आप एक उस्ताद आपके पास होना चाहिए, एक टीचर ख़ास तौर पर, जिससे आप सीखें, और ख़ास तौर पर क्लासिकल म्यूज़िक अगर आप सीखना चाहें।
0: उस्ताद बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस्ताद के साथ सीना बसीना रियाज नहीं करेंगे ना, तो आपको म्यूज़िक की मिस्ट्रीज पता नहीं चल सकती। तो जब वो पता नहीं चलेंगे, देखिए, एक तरफ होता है गाना, एक और उससे पहले होता है गाने को समझना। तो गाने की समझ आपको तभी आएगी कि गाना है क्या असल में। तो वो जब तक आप किसी उस्ताद के साथ नहीं बैठेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि गाना असल में
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गाना गाने के लिए उस्ताद तो लाजमी है, वो है। आपको लगता है कि एक सिंगर जो है अगर प्योरिटी के साथ गा रहा है, उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, मार्केट में लेके आना, अपना है एक एल्बम का तो अब रवाज नहीं, अपने गानों को लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है?
0: ज़रूरी है भी और नहीं भी। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मुश्किल भी है और प्योर भी है, तो मेरे ख़्याल से वो दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि जो दूसरी तरह का गाना है या दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं, वो आर्ट फॉर्म में तो नहीं आती, कुछ और ही आप उनको कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। जब वो सामने आ सकती हैं, तो एक अच्छी जो फॉर्म है आर्ट की, वो क्यों नहीं आ सकती?
1: बिल्कुल आनी चाहिए।
0: तो मेरे ख्याल से वो आपको सामने आना चाहिए। पहले तो मैं ऐसा सोचती थी कि चलें कोई बात नहीं, अगर आप बंद कमरे में भी बैठ के गा रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना शोर बन गया है ना गिरदोनवा में, तो फिर वॉइस आनी चाहिए नॉइस को खत्म करने के लिए।
1: व्हाट डू यू थिंक किस उम्र में बच्चे को म्यूजिक की तरफ लेके आ जाना है? आपको पता है कि इसका टैलेंट है और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, उनको कैसे प्रमोट करना चाहिए बच्चों को, अगर उस पर शौक भी है, टैलेंट भी है, आवाज भी है?
0: जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसको आप सिखाना शुरू करें। अगर आप म्यूजिक को अच्छा समझते हैं, ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो म्यूजिक को क्या समझते हैं। यहाँ पे हमारे कल्चर में थोड़ा ये है,
1: मायूब समझा जाता है।
0: हाँ, इस तरह की कमी है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें है एक जज्बा है सीखने का।
1: उसके बाद हम लौट के आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे।
2: Coming up next, news headlines. News.
3: Nine PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says the agriculture sector has immense potential to bring about revolutionary change in Pakistan's economy. The Deputy Prime Minister has expressed confidence in Shanghai Cooperation Organization's continued role in fostering regional cooperation and development. The Chief of the Defence Forces has underscored Pakistan's commitment to expanding defence collaboration with Lebanon. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the civil society activists have expressed grave concern over the severe repression faced by the Kashmiri people at the hands of the Indian authorities.
4: This is FM 101. This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ, किसी की जिंदगी का।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ, किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे। अस्सलाम वालेकुम, सोने पैन रहो, हंसते वसते रहो, सदा सेहतमंद रहो ते मौजा लुटो। इस दुआ दे नाल तुहाडी मेजबान तुहाडी भैन साइमा तुहाडी खिदमत च हाजिर है। सोने पैन रहो ते मेरे बुजुर्गो, उंज ते साडे मुल्क विच बड़े तबीब ने, पर प्रोफेसर सुलेमान ओ तबीब ने जिन्हां नूं कई वारी गोल्ड मैडल मिल चुकिया है, क्योंकि इन्हां दे इलाज नाल ओ मरीज भी ठीक हो जांदे ने जिहड़े इलाज तों मायूस ते नाउमीद हो गए हों। सोने भैन भरा, इस तो पहला कि प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल गलबात की जाए, मैं लिखवानी हाँ तुहानू अपना पता ते फोन नंबर्स, ताकि तुसी आप भी प्रोफेसर सुलेमान साहब नू मिल सको।
4: सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042-377-27160 रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042

0: नक्शे खफे पा नहीं मिला।
1: बहुत खूब जबरदस्त। और ये मुश्किल चीज़ें हैं आई थिंक क्लासिकल के अंदर, इनको गाना और हाई स्केल के ऊपर।
2: बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट स्टेज जब उस्ताद जी ने मुझे ये गज़ल की प्रैक्टिस करवाना शुरू की थी, तो ये जो इसका जो फर्स्ट वाला सुर है ना इस गज़ल का, आंधी, आप कैन यू इमेजिन, मुझसे यही नहीं कहा जा रहा था। और मैं अब अपने उस्ताद जी का मुंह देख रही हूँ कि ये क्या, मुझे इस सुर का पता नहीं चल रहा।
1: वाह,
2: बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। आप जब तक कोई अच्छा खासा पीरियड नहीं लगाते ना उस्ताद के साथ, तो ये चीज़ें आपको छू कर भी नहीं गुजर सकती।
1: इसमें कोई शक नहीं है जी। ये आपने बजा फरमाया। और मैं चाहूँगा एक अपनी आपकी बुक में से, अच्छा जी दीन की जो एक बुक है ना, इफ़ यू आर ए मैन, तंजीला मुगल की ये किताब है, और ये भी वर्सेस हैं आई थिंक, इसको भी इन्होंने 2022 में आपने इसको लिखा था ना। शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ राइटर, और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, इनसे हम इनकी पोइट्री भी सुन रहे हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ हैं इस वक्त, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नदीम साहब हमारे साथ हैं। ही इज़ वंडरफुल पोइट, और इनसे अभी हम ये भी हमें कुछ ही लम्हों में ज्वाइन करेंगे। प्लीज़
2: एक फ्रेंच प्ले राइट हैं सेमिल बैकेट, तो ये मेरी जो पोइम है ये उनके लिए है, सेमिल बैकेट के नाम। ड्राई योर टीयर्स, इरेज योर वर्ड्स, पेंट योर लॉनलीनेस ऑन अ ब्लैक वॉल विद द कलर ऑफ योर लाइफलेस हार्ट। For that which hasn't happened cries behind the curtain. Questions and answers, unanswered, unspoken, certain or uncertain, over and over again. Don't beat your head with the walls to know. Don't beat your head with the walls to know what to think or what to do. You have nothing to do with love. You have nothing to do with love, and I am dying for it. Oh, Beckett, lucky you yet. You once paid the price. You once paid the price, which I have paid twice. एक्चुअली इसके पीछे इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि सैमुअल बेकेट को एक बार एक ख़ातून ने इजहार मोहब्बत किया, तो बेकेट ने ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया कि आई हैव नथिंग टू डू विद लव, तो उसी का रेफरेंस किया है।
1: अच्छा जनाब, हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर खालिद नदीम साहब हैं। खालिद भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो में आप हमारे साथ हैं, और तंजीला भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम गपशप लगाते रहेंगे। आपको बताते चलें कि जी एक बड़ा ही यूनिक किस्म की पर्सनालिटी हैं इस हवाले से नदीम भाई, के ये पाकिस्तान पुलिस में अपने फ़राइज अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ बड़े शानदार शायर हैं। सर वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम।
3: जी थैंक यू वेरी मच।
1: कैसे हैं आप?
3: अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रेडियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। नदीम भाई, शायरी भी आप करते हैं, पाकिस्तान पुलिस में अपनी खदमात भी आप दे रहे हैं। शायरी और पुलिस का जो एक इम्तिजाज है ये बड़ा एक मुख्तलिफ सा नज़र आता है
3: जी,
1: तो ये आप इसमें किस तरह आ गए?
3: नहीं, ये वो जो है शायरी का सिलसिला जो है वो तो बड़ा पुराना है, फिर बीच में जॉब का जो है वो बन गया, तो फिर वो जो है इकट्ठा ही दोनों चलता रहता है, शायरी भी होती रहती है, नौकरी भी होती रहती है।
1: तो वो कहते हैं ना कुछ, वो फैज साहब का ना, वो लोग बहुत खुशकिस्मत है जो इश्क को काम समझते थे।
3: हाँ जी, हाँ जी।
1: ये काम से आशिकी करते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ किए, कुछ इश्क किया, कुछ काम
3: आखिर
1: किया।
3: तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया,
1: काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हम दोनों को अधूरा
3: छोड़ दिया। नहीं, हम इंशाल्लाह दोनों को कंप्लीट करेंगे।
1: अच्छा मुझे बताएं, आप पुलिस की जॉब से ज्यादा इश्क करते हैं कि अपनी शायरी से ज्यादा इश्क करते हैं?
3: सर जॉब जो है, जॉब भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और जो शायरी है वो एक पैशन है, वो भी उस तरह ही हार्ट फेल्ट है, तो दोनों चीजें जो है, नौकरी भी अपनी इंसान को प्यारी होती है और जो पैशन है वो भी इंसान को अच्छा।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी कोई मुजरिम पकड़ा हो और आगे से वो शायर निकल आया हो और फिर आपको उसके ऊपर बड़ा तरस आया?
3: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो एक बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने कई जगह पहले भी सुनाया कि वो एक दफा ना मैं इंटेरोगेशन कर रहा था किसी मुलजम की, तो रात के 12-1 बजे हुए थे, तो मेरा एक दोस्त आ गया मेरे पास, तो उसने हम चाय पीने लग पड़े। वो मुलजम जो था ना है एजुकेटेड था, किसी कुछ चेक शेक के केस में किसी में आया हुआ था
1: जी।
3: तो उसको जो है ना मैं अपने दोस्त को, दोस्त ने कहा नदीम साहब को 2-3 शेर सुना दें।
1: अच्छा,
3: अच्छा मैंने उसको 2-3 शेर सुनाए, उनमें से एक शेर था कि छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इबहाम होता है, छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इबहाम होता है, बुरे कारों बुरे कामों का तो यारों बुरा अंजाम होता है।
1: अरे वाह।
3: अच्छा, एक मैंने ये शेर सुनाया, एक शेर था कि मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, एक जुर्म है इस दौर में खालिद ये गरीबी।
1: अरे वाह, अरे वाह।
3: अच्छा, एक शेर था उसमें मुझे याद है क्योंकि इंटरेस्टिंग बाद में वाकया बन गया तो मुझे याद रह गया। तीसरा शेर था वो के बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का,
1: बहाते हमने देखा है एक दरिया सा,
3: बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बड़ी मुश्किल से आता है ये राशन एक महीने का।
1: वाह वाह वाह। अच्छा, फिर उसके बाद?
3: अच्छा, ये तीन और एक दो और सुनाए होंगे। खैर वो 4-5 महीने बाद ना मैं किसी कहीं और पोस्टेड था नई जगह, तो वो आ गया मुलजम जो है ना मुझे मिलने के लिए और कहता है कि सर
1: चारों उस वक्त मुलजिम तो ना हुआ ना?
3: नहीं, हाँ जी बाद में आ गया ना।
1: अच्छा,
3: लेकिन मैंने बताया वो पढ़ा लिखा आदमी था।
1: हाँ।
3: अच्छा, उसने
1: कदर शिनास था ना।
3: हाँ जी, हैरत अंगेज तौर पे उसने मुझे आके मेरे तीनों शेर सुनाए जो
1: अच्छा,
3: ये वाले तीन अच्छा, शेर थे। तो कहता साहब जरा थोड़ा वो वाला जो थोड़ा शेर सी ना वो वाला, बुरे कामों का तो यारों बुरा अंजाम होता है, तो उस तो बाद मैं क्विट करता, मैं उन बुरे कामों तौबा कर ली है, तो मुझे इतना असर किया दिल पे कि मैंने उसके बाद जो है ना आई हैव क्विट दैट लाइफ। तो दिस वाज इंटरेस्टिंग।
1: ज़बरदस्त। अच्छा सर, ऐसा हुआ है कभी कि ये जो शायरी है मतलब हम अभी आगे भी ये बात कर रहे थे कि जो शायर होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं थोड़े हसास दिल होते हैं, नरम दिल होते हैं।
3: यस।
1: आपकी फील्ड के अंदर ये है कि आपको बाज़ागा अफसरी भी दिखानी है, सख्त भी होना है, रवैया भी सख्त तुर्श करना है, गुस्सा भी दिखाना है और दिखाना भी पड़ जाता है बास मौक़ों पर। आप एज ए शायर सेंसिटिव इंसान, तो आप अपने गुस्से को और सेंसिटिविटी को कैसे मैनेज करते हैं?
3: नहीं, वो असल मैंने बताया ना कि दोनों की डायमेंशन, जॉब की लैदा है, जो पैशन है शायरी है इसकी लैदा है। जब इंसान जो भी काम करे उसकी जो नोयत, तो बिल्कुल होल हार्टेडली करना चाहिए और ऑनेस्टली करना चाहिए, इसलिए वो चीज़ें आपस में मिक्स मैच नहीं होती। जो है नौकरी अपने पैशन के साथ और शायरी जो है वो दैट इज अनदर थिंग।
1: अच्छा, लेकिन आपकी उसके आपकी नौकरी से आपकी शायरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नुकता है ना, उसकी डिमांड्स अपनी है जॉब की और शायरी जो है,
1: तो आप
3: दैट डिमांड्स।
1: आपके इदारे में तो पता होगा सबको कि नदीम साहब जो है वो शायरी करते हैं।
3: हाँ जी, हाँ जी, पता लगी।
1: शायरी के हवाले से आपको आपके अफसरान कुछ कहते तो नहीं के?
3: जी मैंने, हाँ मेरी बुक भी है बख्त बिस्मिल जो है वो,
1: जबरदस्त।
3: हाँ जी, और वो इस तरह सिलसिला चलता है ना कि इंसान को अपना। जी,
1: हमें कुछ अता करें ना आप, प्लीज। इंस्पेक्टर नदीम साहब हमारे,
3: अर्ज किया जी के हैं बादो तयूर तो आवारा
1: है, बादो तयूर तो
3: हैं, बादो तयूर तो आवारा जो जी में आए कर जाएं, हैं बादो तयूर तो आवारा जो जी में आए कर जाएं, खालिद वो बाग नहीं रहते वो जिनके माली मर जाएं।
1: हाय हाय, वाह वाह वाह वाह।
3: हैं बादो तयूर तो आवारा जो जी में आए कर जाएं, खालिद वो बाग नहीं रहते वो जिनके माली मर जाएं, कब मौसम में गुल वो पहले से कब गुल में भी वो बास रही, इस बार चमन में उतरे तो मुमकिन है बहारें डर जाएं।
1: अरे वाह, अरे वाह।
3: कहता कब मौसम में गुल वो पहले से कब गुल में भी वो बास रही, इस बार चमन में उतरे तो मुमकिन है बहारें डर जाएं, अब किसके भरोसे पे फिरना इस शहर में मारे मारे यूं,
1: अब किसके भरोसे,
3: अब किसके भरोसे पे फिरना इस शहर में मारे मारे यूं, वो शख्स नहीं अब पहले सा, बेहतर है हम भी घर जाएं।
1: अरे वाह, अरे वाह, बहुत।
3: खालिद वो बाग नहीं रहते वो जिनके माली मर जाए।
1: अरे वाह। अच्छा दी मुझे बताइए, आपके अंदर इंस्पेक्टर ज़्यादा ताकतवर है कि शायर?
3: आई थिंक शायर ज़्यादा ताकतवर,
1: शायर ज़्यादा ताकतवर है। और आप अपनी शायरी पे ज़्यादा फोकस होते हैं?
3: नहीं, दोनों भी होता है, लेकिन जो शायरी बताया ना कि ये दैट इज़ ए गॉड गिफ्टेड थिंग, और ये पैशन है, और ये बड़ा पुराना है। मतलब कि आई वाज 6 years old जब मैंने कोई टूटा फूटा सा शेर कहा था, वो मुझे अब याद भी नहीं है।
1: अच्छा शायरी के हवाले से ज़ाहिर बात है कि इनक्रेजमेंट, जैसे हम अभी इनसे बात कर रहे थे तंजीला से भी, कि शायर या आर्टिस्ट को इनक्रेजमेंट की बड़ी ज़रूरत है, उसको उसकी दाद रसी बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है एक शायर एक आर्टिस्ट को उसको अप्रिशिएट करना, उसको इनक्रेज करना?
3: नहीं, जो जो है ना अप्रिसिएशन तो किसी भी फील्ड में जो है ना, मतलब एक बच्चा अगर 2 class का है और वो अच्छे नंबर लेता है, तो जब पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यस यू हैव डन समथिंग गुड, तो नेक्स्ट ही विल डू मोर गुड।
1: वेरी नाइस।
3: तो अप्रिसिएशन जो है वेरी एसेंशियल, दिस इज नॉट यू कैन से इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल है कि जो है अप्रिसिएशन इन एवरी फील्ड ऑफ
1: पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए कि आपके जब जब मीटिंग्स चल रही होती हैं, जब आपके अफसर बैठे होते हैं, तो ऐसा होता है मीटिंग्स के दौरान आपके पुलिस अफसर कह रहे हैं कि जी हमें अब थक गए कुछ शायरी सुनो?
3: नहीं, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि जो जॉब है ना उसकी उसकी डिमांड्स और है। ये जो शायरी है ये फ्री टाइम का काम है, जब आप अपनी ये आपको अपने टाइम में से टाइम निकालना है, कि वो जो जॉब की डिमांड है वो तो यू हैव टू फुलफिल। तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते।
1: अरे वाह क्या ख्याल है।
3: तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम जिंदगी से मेरी कभी जंग देख लेते।
1: वाह वाह वाह।
3: तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम जिंदगी से मेरी कभी जंग देख लेते। मौसम की जर्दियां सब चेहरे पे आ गई थी।
1: वाह वाह।
3: मौसम की जर्दियां सब चेहरे पे आ गई थी, तुम गर्दिशों में मेरे कभी रंग देख लेते।
1: अरे वाह अरे वाह।
3: कहता मौसम की जर्दियां सब चेहरे पे आ गई थी, तुम गर्दिशों में मेरे कभी रंग देख लेते। मेरे हौसलों की राह में तुम जिस्मों जहाँ बिछाते, मेरी वहशतों को तुम जो मेरे संग देख लेते।
1: वाह वाह वाह।
3: कहना मेरे हौसलों की राह में तुम जिस्मों जहाँ बिछाते, मेरे मेरे होस मेरी वहशतों को तुम जो मेरे संग देख लेते। बेदर पे हादसों से मैं डर गया था कितना, बेदर पे हादसों से मैं डर गया था कितना, मैं कैसे हो गया था कभी दंग देख।
1: हाय हाय हाय हाय। वाह वाह।
3: कहंदा बेदर पे हादसों से मैं डर गया था कितना, मैं कैसे हो गया था कभी दंग देख। हमें मौजजा लगा था, शेर सुने, हमें मौजजा लगा था इस भ्रम को बचाना, हमें मौजजा लगा था इस भ्रम को बचाना, मुमकिन था लोग मेरे सभी नंग देख।
1: हाय हाय हाय
3: हाय। कहता हमें मौजजा लगा था इस भ्रम को बचाना, मुमकिन था लोग मेरे सभी नंग देख।
1: वाह वाह वाह।
3: तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम जिंदगी से मेरी कभी जंग देख।
1: वाह वाह वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत, क्या खूबसूरत ख्याल है
3: सर सर।
1: और हसबे हाल
3: सर,
1: ऐसे लगता है कि आप पूरी एक जिंदगी का खाका जो है ना आपने बयान कर दिया। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि जनाब इस वक्त
3: एक और फ्लोज बना हुआ है, सुने को?
1: जी जी जरूर जरूर।
3: कहता है बिछड़ेंगे तुमसे ऐसा कि तुम याद करोगे,
1: बिछड़ेंगे
3: तुमसे ऐसा कि तुम याद करोगे, मानोगे बड़े मौजज़े फरियाद करोगे।
1: वाह वाह वाह।
3: बिछड़ेंगे तुमसे ऐसा कि तुम याद करोगे, मानोगे बड़े मौजज़े फरियाद करोगे। शेर सुने, कहता है तुम वास्ते डालोगे बस एक दीद के मेरी,
1: तुम वास्ते
3: डालोगे बस एक दीद के मेरी, तुम खुल के फकीरों को भी खैरात करोगे।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: कहता तुम वास्ते डालोगे बस एक दीद के मेरी, तुम खुल के फकीरों को भी खैरात करोगे। रो रो के हमें मांगोगे दरबार पे जाके, रो रो के हमें मांगोगे दरबार पे जाके, तुम कैदी परिंदे बड़े आजाद करोगे। तुमोट लेके दाम ने अबरे बहार की, दीदाए तर से अशकों की बरसात करोगे।
1: अरे वाह,
3: शेर सुने कहता है, तुम माफिया मांगोगे मेरी लहद पे बैठे, तुम माफिया मांगोगे मेरी लहद पे बैठे, तन्हाइयों के दश्त को आबाद करो।
1: अरे वाह,
3: बिछड़ेंगे तुमसे ऐसा कि तुम याद करोगे, मानोगे बड़े मौजज़े फरियाद करो।
1: क्या बात है, क्या कहने हैं जी, क्या कहने हैं ना, खूबसूरत खूबसूरत ख्याल, खूबसूरत शायरी। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूँ जनाब, इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर नदीम खालिद साहब हैं। आप पाकिस्तान पुलिस से आपका ताल्लुक है, आप एज ए इंस्पेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ख़ूबसूरत शायर हैं, और इनकी शायरी सुन रहे हैं और दिल कर रहा है कि इनसे सुनते जाएं, इनका कलाम सुनते जाएं। बाकायदा तौर पे शायरी आपने कहीं से सीखी है, कोई उस्ताद है कि बस आमद है?
3: टोटल गॉड गिफ्टेड, मतलब कि आई हैव नेवर इवन कंसर्न्ड अ पर्सन टू इन एनी सॉर्ट ऑफ।
1: अच्छा,
3: बिल्कुल टोटल जो है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। और ये सारा बल्कि
1: किसी से कोई रहनुमाई भी नहीं ली, किसी से आपने कुछ?
3: सर बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ,
1: पलक
3: नहीं, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, दूसरे दीगर जो सारे
1: पढ़ते हैं
3: पोइट्स हैं,
1: अच्छा उनको
3: काफी पढ़ा हुआ है, लेकिन वैसे जिसे आप कहते हैं कि वो करेक्शन वगैरह, वो ऐसे ऐसा किसको
1: बाकायदा उस्ताद नहीं इसमें।
3: और ये जैसे थोड़ा सा ना, अक्सर लोग हैरान होते हैं कि इतनी परफेक्शन कैसे है कि जब आपने किसी से यू हैव नॉट टेकन एनी साइड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एनीवन। एक और चीज सुनाता हूँ आपको, ये सुनाऊँ आपको?
1: जी जी जी, प्लीज प्लीज अर्शाद जी, प्लीज प्लीज।
3: कहता है शायर, कह रहा है, अपने बालों में चांदियों के बसेरे उतरे तो याद आया,
1: अपने बालों में
3: चांदियों के बसेरे उतरे तो याद आया, हमको खुद का ख्याल देखो कितनी मुद्दत के बाद।
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह।
3: अपने बालों में चांदियों के बसेरे उतरे तो याद आया, हमको खुद का ख्याल देखो कितनी मुद्दत के बाद आया, कितने मौसम ही झेले हमने, कितनी धूपें ही काट डाली, जिसको कहते हम अपना यारों कोई लम्हा नहा था। आसूदगी की तलाश हमको कभी थी फिक्रे मुआश, हमको
1: आसूदगी की तलाश
3: हमको कभी थी फिक्रे मुआश, हमको हम पे आलम शबाब देखो किन खराबों के साथ आए। हमारे हिस्से की खुशियां हमसे रहीं गुरेजां दवाम क्यों कर, हमारे हिस्से की खुशियां हमसे रहीं गुरेजां दवाम क्यों कर, क्यों जिंदगी तेरी बज्म से भी ये दिल हमारा नशाद आया।
1: आए हाँ, वाह वाह।
3: शेर सुने, लहद में पहुंचे हम अपनी यारों आजुर्दगी की दुहाई देते, लहद में पहुंचे हम अपनी यारों आजुर्दगी की दुहाई देते, नींद अबदी हम सो रहे थे जमाना देने जब दाद आया।
1: अरे वाह, अरे वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब बहुत खूब। आप जारी अभी
3: नहीं?
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी कभी किसी मुलजिम को पकड़ते हुए, हिरासत में लेते हुए, कुछ शेर ऐसा आपके एकदम ख्याल में आ गया कि आपको तर्स भी आ गया और ये कि नहीं यार, ये बंदा बड़ा मासूम सा है, होता ना कभी कभी?
3: हाँ, एक दफा ना, एक मुलजिम था, तो वो मुलजिम तो खैर मुलजिम था, लेकिन वो उसके साथ ना कोई एक लड़की थी जो पता नहीं उसकी फियांसी थी या उसकी बीवी थी, वो बड़ी उसके साथ है, गरीब थी बड़ी वो, लेकिन उसके साथ बड़ी अटैच थी, तो वो जो है ना, शी वाज इंसिस्टिंग कि आप मुझे भी ना इसमें ही डाल दें।
1: अच्छा,
3: इसके साथ ही बंद कर दें।
1: अच्छा,
3: तो मैं उसको बताया कि नहीं, लेकिन उसका जो था, तब मेरे ना एक शेर जेन में आया था वो देख के, कि नज़ारे इश्क में हमने अजीब देखे हैं, नज़ारे इश्क में हमने अजीब देखे हैं, दौलत इश्क पे काबज गरीब देखे
1: वाह वाह वाह,
3: नजारे इश्क में हमने अजीब देखे हैं,
1: दौलत इश्क
3: पे काबिज गरीब देखे।
1: अच्छा तंजीला, इधर मैं आपसे पूछूंगा कि आप चूंकि एक शायरा भी हैं और आप अक्सर आपका जो इंतखाब होता है, कभी आपने देखा है किसी पुलिस वाले को इतनी खूबसूरत शायरी करते हुए?
2: बिल्कुल नहीं, ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, विच इज़ वेरी गुड,
1: है ना?
2: बिल्कुल।
1: और कितनी खूबसूरत शायरी और पूरी वजन में, और मतलब ऐसी है कि आप सुनते जाएं।
2: मुझे ऐसे लगता है शायर भी इंसान होते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे भी एक शेर याद आ रहा है।
1: जी जी।
2: जिक्र यार करे कोई के फिक्रे मुआश करे कोई, छोटी सी जिंदगी है क्या क्या करे
1: क्या
2: कोई,
1: क्या करे कोई।
2: तो एक और एक लाइन है, मुझे वो पूरी पॉइंट तो नहीं आती,
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुशायरा हो रहा है यहाँ पे और मैं जो ना वो एज ए होस्ट बैठ के फराइज अंजाम दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ।
2: यहाँ पर मुझे ना एक पोएम का एक टाइटल याद आ रहा है, आई हैव मैनी मी, सॉरी आई एम मैनी मी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग काफी कुछ होते हैं, हम वो भी होते हैं जो हमारी तरबियत हुई होती है, हम वो भी होते हैं जो हम तालीम हासिल करते हैं, जो कि कल्चरली एक तालीम होती है टिपिकल किस्म की, जो स्कूल्स में बताई जाती है स्टूडेंट्स को, और फिर आपका कल्चर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आपकी कई तरह की पर्सनालिटीज़ बन जाती हैं
1: और ऑटोमेटिकली बन जाती हैं।
2: बिल्कुल,
1: ये जो आर्टिस्ट है या शायर या सिंगर है ये बॉर्न होता है।
2: बिल्कुल,
1: ये इसके लिए बनना नहीं है कि आपने निखरना है, सवरना है, सुबह उठे दिल की शायरी कर लें,
2: exactly.
1: फिर दिल की सिंगिंग कर लिए, ये बॉर्न होते हैं ये आर्टिस्ट।
2: बिल्कुल,
1: और ये आर्ट किसी की मिरास नहीं है, और जिस तरह रदीम साहब इतने प्यारे आर्टिस्ट हैं, इतना प्यारा पोइट्री करते हैं, इनकी जॉब बहुत टफ है, बड़ी ही हैटिक जॉब होती है
2: ये तो मेरे ख्याल से शायरी जो है ना वो अदातों अतवार में होती है, आपके ना मिजाज में होती है। मैं तो बचपन से बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की, मैंने बचपन में भी कभी शरारत नहीं की, मुझे नहीं पता इनका क्या मिजाज रहा होगा बचपन में, लेकिन मैं बचपन में भी सीरियस।
1: अच्छा नदीम भाई, ये बताएं मुझे कि ये शायर जो हैं हमारे, वैसे नॉर्मली देखा गया है कि ये बड़े ही अपनी एक इनकी दुनिया होती है, अपना एक इनका रंग होता है, उस दुनिया के अंदर ये गुम सुम होते हैं, क्या हर शायर के लिए ज़रूरी होता है कि वो गुम रहे और फिर ख्यालों में रहे और फिर उसके बाद शायरी करें?
3: हाँ जी, मिजाज की बात है, वैसे मे भी नहीं ऐसा ना भी हो, लेकिन पर है, हो भी सकता है ऐसा।
1: तो आप की इंस्पिरेशन कौन है शायरी के अंदर, किसको आप पढ़ते हैं, कौन आप?
3: सब पढ़े हुए हैं, ऐसा बोलो कि आई हैव नेवर आइडलाइज एनी पर्सन, लेकिन जो अच्छे शायर हैं सब भी सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं।
1: अच्छा, कोई खास एस सच
3: नहीं इंस्पिरेशन
1: मिल, और फैमिली में कोई आपके शायरी करता?
3: नो नो वन, दे ऑल आर पोएट्री लवर्स बट दे आर नॉट पोएट, दे आर गुड लिसनर्स।
1: अच्छा, आपको सुनते हैं?
3: यस यस, इवन दे हैव इंसिस्टेड मी टू राइट डाउन अ बुक।
1: अच्छा,
3: वो मतलब कि ना पोएट्री लवर अच्छे हैं, वो शायरी अंडरस्टैंड बड़ी अच्छी करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव गुड सेंस ऑफ पोएट्री।
1: और ये बड़ी मजे की बात है, आपने बताया कि फैमिली में कोई भी नहीं है जो शायरी करता है,
3: मैंने,
1: लिखता
3: लेकिन
1: है,
3: मैंने ये अर्ज किया कि पोएट्री लवर हैं सारे, अच्छी शायरी सुनते बड़े शौक से।
1: अच्छा, ये बड़ा मजा आता है कि आपके फन की कदर करने वाले हों।
3: हाँ जी,
1: आपको अप्रिशिएट करने वाले हों, आपकी फैमिली में इनकरेज करने वाले हों, वो आपके फन को और इन्हांस कर देता है और उसको बढ़ा देता है फनकार को। जी जी,
3: मैंने बताया ना पहले, कहा कि अप्रिसिएशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है किसी भी फील्ड के अंदर, अप्रिसिएशन जो है वो दैट इज असेंशियल यू कैन से।
1: अच्छा, शायर के लिए क्या ज़रूरी है कि वो मुशायरों में भी जाए? आपकी चूँकि पुलिस की जॉब है और उसमें भी मसरूफियत होती है, क्या मुशायरे अटेंड करना ज़रूरी है कि बस अपना एक शौक है, एक
3: शौक नहीं, शौक नहीं, इसमें जाना चाहिए बिल्कुल मुशायरों में, मतलब कि योर टैलेंट आर योर शुड बी स्प्रेड एवरीवेयर, इसलिए वो ज़रूरी है इसमें वो तो। और एक अच्छा शायर बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, वो एटमॉस्फेयर प्रॉपर, वो जो है मुशायरे ज़रूरी है शायर के लिए,
1: और उसको इनकरेजमेंट मिलती है।
3: जी बिल्कुल,
1: उसको हौसला अफजाई मिलती है।
3: हाँ जी, जो लाइव जो अप्रिसिएशन है वो दैट इज़ ऑलवेज वेरी गुड, कि जो वैसे तो देखें जो कमेंट्स में या लोग वैसे जो है सोशल मीडिया पर लाइक वगैरह करना, लेकिन जो लाइव जो है अप्रिसिएशन दैट इज़ वेरी यू कैन से डिमांडिंग।
1: लाइव का अपना एक मजा है ना, इवन चाहे वो लाइव स्टेज भी हो ना, आप एज ए सिंगर आप गा रहे हो या मैं एज ए होस्ट जब मैं लाइव शो कर रहा होता हूँ तो उसका अपना एक फील आती है।
3: देखिए ना, मैं आपको सुना रहा हूँ आगे से आप वाहवा गाने, आपको ये वाहवा ही है दैट दिस इज लाइव अप्रिसिएशन।
1: और मैं तो कहता हूँ कि ये जो वाहवा है और ये जो तालियां हैं और ये इनकरेजमेंट है, ये फनकार के फन का सदका है।
3: हाँ जी,
1: और उसको ये अता होनी चाहिए, आपको इनकरेज। सर कुछ और अता करें फिर हमने क्लोजअप की तरफ जाना है।
3: जी बिल्कुल, कहता जी अर्ज समाज फरमाएं कि तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई।
1: वाह वाह वाह,
3: तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
3: तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ, रकाबत में मेरी देखो जमाना रहा बरसों, तुम भी बने रकीब ये अच्छा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
3: रकाबत में मेरी देखो जमाना रहा बरसों, तुम भी बने रकीब ये अच्छा नहीं हुआ। आखिर हवाए हिजर में दोनों झुलस गए, आखिर हवाए हिजर में दोनों झुलस गए, आए न फिर करीब ये अच्छा नहीं हुआ।
1: अरे वाह,
3: लोगों को दिए हौसले किरदार कशी के, हम तुम बने हरीफ ये अच्छा नहीं
1: अच्छा
3: हुआ,
1: नहीं हुआ।
3: और शेर सुने, हुए दस्तों गिरे बांजो जमाने के सामने, हुए दस्तों गिरे बांजो जमाने के सामने, सब कुछ तो चलो ठीक ये अच्छा नहीं
1: अच्छा
3: हुआ।
1: नहीं हुआ। अरे वाह,
3: तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं
1: अच्छा नहीं हुआ। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। मुख्तसर वक्त में मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा मुशायरा हो रहा है और दो शानदार शायर मेरे सामने बैठे हैं। हम सब लोग यहाँ पे सामने भरपूर महसूस हो रहे हैं आप लोगों की शायरी से, आप लोगों के कलाम से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तंजीला आपका, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छी मौसीकी हमें सुनने को मिली, आपका ट्रैक भी हमने इनका चलाया। नदीम साहब, मैं भी आपको रेफ़र करूँगा, बल्कि भेजूँगा, आप सुनिएगा, बहुत शानदार इनका जो गाने इन्होंने गाए हैं।
3: जी जी, मैं देखा था, अभी सुन भी रहा था
1: जी, तो वो भी और फिर उसके साथ साथ शायरी भी और इनकी अपनी किताबें भी हैं। आप भी एज ए इंस्पेक्टर पाकिस्तान पुलिस के अंदर अपनी ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत शायरी भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इसी तरह ही अपने काम को करते रहें और मोहब्बत से करते रहें। और हम लोगों के लिए, यानी कि हम लोग सब जो सुनने वाले होते हैं, हम महसूस होते हैं अच्छी शायरी से, अच्छी मौसीकी से। और तमाम सुनने वाले, जिस वक्त हमारे सुनने वाले लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, सॉरी बट मैं आप लोगों की कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकता इस वक्त क्योंकि टाइम बहुत कम है। सर लास्ट में मैं चाहूँगा आप दोनों से कुछ क्लोजिंग कुछ कहना चाहेंगे आप, प्लीज़। आप तो मेरे ख्याल में कुछ शेर की सूरत में कहना चाहेंगे।
3: जी, अर्ज़ किया कि सारे रंगों में हमें रंग वही भाता।
1: अरे वाह,
3: सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओढ़ चला।
1: हाय हाय हाय,
3: सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओढ़ चला आता है। ऐसे मबहूत सा करता है वो गदाज बदन, नहीं मालूम कि फिर होश कहाँ जाता।
1: अरे वाह, अरे वाह, बहुत खूब।
3: सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओढ़ चला।
1: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंस्पेक्टर नदीम खालिद साहब हमारे साथ थे और तंजीला मुगल, आपसे भी मैं चाहूँगा लास्ट में क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों के लिए, उन आर्टिस्टों के लिए, उन सिंगर्स के लिए, उन लिखने वालों के लिए, एनी मैसेज?
2: तो सभी के लिए, सभी को ये कहना चाहूँगी कि मैकेनिकल अप्रोच ना रखें, अपने अंदर थोड़ी सी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी करें।
1: वेरी नाइस।
2: इससे हम अपने इर्द गिर्द जो इंसान है उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं।
1: आप नेचुरल रहें, है ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। मैं भी चाहूँगा इजाज़त इसी अपने पन के साथ कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे 10 to 12। टिल देन अल्लाह निगहबान एंड लव टू ऑल।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

थैंक यू।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो यार की, ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। मुनीर नियाजी साहब की ये नज्म, हमेशा देर कर देता हूं मैं। कभी कभी लगता है कि जैसे ये हमारे लिए ही लिखी गई हो। जिंदगी में कितने ऐसे काम होते हैं जो वक्त पर करने बनते हैं, जो वक्त पर करने चाहिए, लेकिन चाहते या ना चाहते हुए, कोशिश के बावजूद भी अक्सर देर हो जाती है। और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं वजह हम ही होते हैं। आज की आपसे मुलाकात 12 बजे थी, लेकिन आज भी मैं लेट हो गया। माजरत चाहता हूँ आप उन तमाम दोस्तों से जो कि सुन रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे और मैं वक्त पे नहीं पहुँच सका। आपका शुक्रिया कि आप फिर भी जमे रहे, सुनते रहे, इंतज़ार करते रहे और आखिरकार मैं आ ही गया। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। हर मंगल को आपसे मुलाकात होती है रात 12 से 2, प्रोग्राम हर्फ़े जुनू में। कुछ दिल की बातें होती हैं यहाँ पे साहिब, वो बातें जो अक्सर मैं यहाँ वहाँ कहने से हिचकिचाता हूँ, यहाँ पे आके आपसे कर लेता हूँ, कह देता हूँ। और वो बहुत सारी बातें जो बाज़ुकात हम नहीं कर पाते, किसी से डायरेक्ट नहीं कह पाते, सीधा सीधा नहीं कह पाते, मेरे अक्सर लिसनर्स, अक्सर सुनने वाले उन बातों का इजहार ख्याल इस प्रोग्राम में आके भी करते हैं। बहरहाल ये दिल की उन बातों का एक सिलसिला है जो कहीं ना कहीं जुनून से मंसूब की जाती हैं। आज भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी हैं। सोच रहा हूँ कि किस जज्बे को सबसे पहले अल्फाज का रूप देके गुफ्तगू का आगाज करूँ, किस बात को मुद्दा बनाऊँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कोई सवाल करूँ या जवाब देना शुरू कर दूँ। बहरहाल ये सिलसिले तो चलेंगे और 2 बजे तक चलेंगे। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप आ सकते हैं, आके आप अपने मन की बात कह सकते हैं। क्या अजीब है ना कि मन मर्जियां अक्सर कम ही चलती हैं। जो हम चाहते हैं, जो मन चाहता है,
वैसा हो नहीं पाता, लेकिन वो कह तो सकते हैं ना, कहने में तो कुछ नहीं जाता, तो चलो कह लेते हैं, कह देते हैं। 100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक मुझ तक पहुँच रही है, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। वो दोस्त जो आज पहली बार सुन रहे हैं या जिनको मालूम नहीं है कि किस तरह से प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0422110101 पे। इस वक्त मैं लाहौर से लाइव हूँ, लाहौर से बराह रास्त हूँ, सो लाहौर का डायलिंग कोड आपको ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। लाहौर का सिटी कोड है 042 और फिर 1111001 पे आप कॉल करेंगे, या फेसबुक का फ़ैन पेज है लाहौर का, FM 101 लाहौर लिख के सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा, और यहाँ पे आके हमारे इस प्रोग्राम की पोस्ट पे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। कुछ कहना चाहें, कुछ सुनना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आइएगा, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है उसकी सयाह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी, जो सादा दिल हैं उसे बन सवर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, हाय हाय हाय हाय हाय, फराज साहब कमाल कर दिया। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का। सो राह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं, कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें के कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरें के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं।
सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं।

0: तुम्हें मालूम है ना कि कुछ सफर बड़े थका देने वाले होते हैं। अब शदीद थक जाते हैं उन रास्तों को काटते हुए, नापते हुए, मुसलसल चलते हुए जानिब मंजिल एक खास समत में चलते हैं, और आपके पांव जख्मी, आपका दिल भी जख्मी, लेकिन फिर भी आप दिल की शिद्दतों के हाथों मजबूर मुसलसल चलते हैं, चलते हैं और चलते ही चले जाते हैं उन रस्तों पर कि जिनकी कभी कभी कोई मंजिल भी नहीं होती। क्या आपको मालूम होता है कि मैं मंजिल के शायद करीब तो पहुंच जाऊं लेकिन मंजिल को पा नहीं पाऊंगा? वो सफर, वो रास्ते, वो मुसाफतें और वो सारे सफर का दुरानिया, उस सफर के दौरान तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के ख्याल, कई तरह के खदशे, और फिर यूं होता है कि चलते चलते चलते चलते जख्मी दिल और जख्मी पांव और अपने सारे टूटते बदन के साथ आप कहीं ना कहीं उस मंजिल पे पहुंच तो जाते हैं। आपको मंजिल मिलती तो है लेकिन बड़ी थोड़ी सी देर के लिए, और अचानक से मंजिल पे पहुंच के ये हुक्म सादिर होता है कि अब दोबारा से वापसी का सफर होगा, यहाँ से वापस जाना होगा, यहाँ पे तुम ठहर नहीं सकते। ये सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था जिसको तुम मंजिल समझकर भाग रहे थे न जाने कब से। एक लंबी मुसाफत, एक लंबे सफर के बाद उस मंजिल तक पहुंच के वापसी का सफर टूटते दिल के साथ वापसी का सफर, अपनी पसंदीदा चीज को हासिल कर लेने के बाद उसको खो देने का जो सदमा होता है, जो ट्रॉमा होता है, बड़ा शदीद तर होता है। दर्द सह ना पाएगा पिया, दिल है मोम का दिया। मैं ये वाला गाना जब भी सुनता हूँ ना, जो अब से कुछ देर पहले ये चल रहा था, तो मुझे भी अपना एक खास सफर याद आता है। उस सफर से वापसी के दौरान ये गाना कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में बज रहा था। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ, आपकी यादों के साथ या कुछ खास वक्तों के साथ मंसूब हो जाती हैं। आप कभी भी किसी भी हालत में जब उस चीज़ को देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, तो आप किसी ख़ास वक्त या ज़माने में पहुंच जाते हो। कुछ ख़ास लोग, कुछ ख़ास चेहरे, कुछ ख़ास रवैये, कुछ ख़ास सा जोन दोबारा से पलट के बिल्कुल अपनी उसी हालत में वापस आ जाता है। वो फिर सारे सफ़र और रद्दे सफ़र याद आते हैं, पागलपन, वो जुनून याद आते हैं। आप सोचते हो कि जिंदगी ने हमें कहां कहां से गुजार के बिलाखिर यहां तक पहुंचा दिया। जो लोग इस तरह के किसी सफ़र से और फिर उसके बाद रद्द सफ़र से गुजरे होंगे, शायद कहीं ना कहीं मेरी बातें उनको समझ आ रही होंगी। जी हाँ, ये बात आपके लिए ही तो है। कुछ बातें बड़ी हार्ट टू हार्ट होती हैं, दिल से दिल तक होती हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ बातें दिल से की जाती हैं और फिर दिल वाले ही उसको सुनते हैं या समझते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा लगता है कि जब आप यहाँ पे होते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, फीडबैक देते हैं, आपके कुछ मैसेजेस को शामिल करते चलते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं। जुगनू जूनियर हैं हमारे साथ। जुगनू, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हो। आपके बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे मुझ तक मिले हैं, आपकी मोहब्बत है, चाहत है, आपने सलाम भेजे हैं, फूल भेजे हैं, बेस्ट विशेस भेजी हैं और न जाने क्या क्या कुछ भेजा है। मोहब्बतें आपकी। जुगनू सीनियर हैं और कहते हैं कि लेट आकर भी खूबसूरत अदा, शुक्रिया। मोहम्मद सिद्दीक डार हैं, आपने कुछ पोइट्रीज़ भेजी हैं, इनको भी शामिल करते हैं। सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम मोहतरम आर जे ज़ियानजुम भाई एंड ऑल स्वीट लिसनर्स ऑफ FM 101। ठंडा पानी आज़ाद कश्मीर से आप सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया। और कहते हैं कि शबे सयाह पे वार रोशनी का बाब तो हो, मगर ये शर्त है कोई सितारा याब तो हो। मैं हर्फ बन के तेरी रूह में उतर जाऊं, मेरा सुखन तेरी महफिल में बार याब तो हो। सवादे शब के सफर में सितारा वार चलूं, तेरे जमाल की लो मेरी हम रकाब तो हो। किसी तरह तो घटे दिल की बेकरारी, चलो वो चश्म नहीं कम से कम शराब तो हो। असासे जिस्म उठाऊं नए सिरे से, मगर ये सोचता हूँ कि मिट्टी मेरी ख़राब तो हो। वो आफ्ताब लबे बाम भी उतर आए, मगर किसी में उसे देखने की ताब तो हो। क्या बात है, शुक्रिया डार साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जुगनू जूनियर आपका बेहद शुक्रिया, आपने सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम अम्मार शेख भी सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जो जो जहाँ जहाँ से हमें सुन रहा है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। AQ हमारे साथ हैं, आतिफ कहते हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, सलाम टू ऑल लिसनर, नाइस स्टार्ट, शुक्रिया जी। सिद्रा हैं हमारे साथ बहावलपुर से, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। और कहती हैं कि अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तखारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, थैंक यू। ज़ीरो 4211100101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला लेने जा रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। कॉल्स मुसलसल बज रही हैं, देखते हैं कि पहले रैंडम कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है?
1: हमारा बात कर रही हूँ, एफएम 101 पे बात कर रहे हैं
0: जी। एफएम 101 पे हमारा आपकी कॉल है, मैं ज़ियान जुम बात कर रहा हूँ, कहिए।
1: मैं भी शेर व शायरी सुनाना चाहती हूँ
0: जी, सुनाइएगा
1: अपने दोस्तों को। जुगनू ढूंढते रहते हैं जुगनू के बाजारों में, जुगनू ढूंढते रहते हैं जुगनू के बाजारों में, वफा को आज तरसते हैं वो ही दो किनारों पे।
0: वाह,
1: कर दिया उन्होंने फैसला बेवफाई का, अब तरसते हैं जुगनू बाजारों में।
0: ठीक है, ये अब आपने फोन खुद काटा है या ये ऐन आपके शेर मुकम्मल होते ही काट गया है? लेकिन ठीक है, अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से, कैसे हैं?
0: बिस्मा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: जी मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या कहना चाहेंगी?
2: आपका टॉपिक क्या है?
0: अभी तक मैंने किसी टॉपिक पे कोई बात शुरू नहीं की। आप सुन नहीं रही?
2: सुन रही हूँ मैं।
0: अच्छा,
2: तभी तो मुझे समझ नहीं आया
0: कि क्या बात करनी है।
2: हाँ जी, मैं आपको एक शेर सुनाऊं?
0: सुनाए।
2: बिछड़ेंगे तुमसे ऐसा कि तुम याद करोगे, मानोगे बड़े मौजूदे फरियाद करोगे, तुम वास्ते डालोगे बस एक बीत के मेरी, तुम खुल के फकीरों को भी खैरात करोगे, रो रो के हमें मांगोगे दरबार से जाके, तुम कैदी परिंदे बड़े आजाद करोगे, तुम ओस लेके दामने आवरे बहार की, दीदाए तक से अशकों की बरसात करोगे, तुम माफिया मांगोगे मेरी लहज पे बैठे, तन्हाइयों के दश्त को आबाद करोगे, बिछड़ेंगे तुमसे ऐसा कि तुम याद करोगे, मानोगे बड़े मौजूदे फरियाद करोगे।
0: क्या बात है, ये तो अगले को वार्निंग्स दी जा रही थी, तड़ियां लगाई जा रही थी, क्या वजह इसकी?
2: इसकी वजह ये है कि सोच लो ये होगा तुम्हारे साथ।
0: अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं भी होता, पता है आपको, हमारी खुशफहमियाँ होती हैं कि हमसे बिछड़ के वो शख्स पता नहीं किसी काबिल नहीं रहेगा, लेकिन हमसे बिछड़ के कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, वो कहते हैं अच्छा हुआ जान छुटी।
2: अच्छा चलो, अच्छी बात है, उसकी जान छूट गई है और हमारी भी छूट गई है, हमें कोई और नहीं देगा। अच्छा,
0: हम सोचते हैं कि हमसे बिछड़ के वो हमारी लहद पे आके फरियाद करेगा और रो रो के पता नहीं क्या करेगा और ये करेगा वो करेगा, वो कहना भाई जान मैं तो मैंने सब तो पहले पिज़्ज़ा खवाओ,
2: मुझे ट्रीट दो, बल्कि ट्रीट देगा वो सबको अपने दोस्तों को कि आज मैं आजाद हो गया हूँ।
0: तो आप ऐसी हैं?
2: नहीं, पता क्या, मैंने आपको ये शेर क्यों सुनाया है, ये मैंने अभी यहाँ एफएम रेडियो 101 से जो है ना वो चुराया है और लिखा है अपनी नोटबुक पर, तो ये सबसे इजी लग रहा था तभी मैंने आपको सुना दी, और भी हैं पर वो शायद मैं सुनाते सुनाते अटक जाती या फिर मुझसे ना सुनाया जाता, तो ये थोड़ा इजी भी लग रहा था, तो मैंने इस वजह से सुना दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि ये इसका मतलब क्या है, तो मैंने बस पार्टिसिपेट करने की है कि चलो मैं भी कुछ सुनाती हूं।
0: अच्छा किया बिस्मा आपने ना, ये अच्छा किया आपने, जो इजी चीज़ें कॉपी करके ना आपने, ये अच्छी बात की आपने।
2: वैसे आपकी वो बात मैं सोच रही थी, वही मैं सोच रही थी जो आपने भी बात किया ना कि हम कहीं जाते हैं या कोई ऐसी कोई सॉन्ग है जो हमारे इस तरह यादों में आ जाता है, मीन्स कि जब वो हम सुनते हैं तो हम दोबारा वही पास्ट में चले जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे भी सॉन्ग से याद आ रहे थे कुछ दो तीन, तो वो मैं सोच रही थी तो मुझे भी यादें आ रही थी पास्ट की, आपकी बात सुनकर मैं पता नहीं कहाँ कहाँ खो गई थी।
0: अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है।
2: बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसके मैंने कहा कि चलो कॉल करके आपसे बात करते हैं और जो इजी सा सुना देते हैं।
0: चलें, शुक्रिया बिस्मा, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।

0: अच्छा, बड़े मज़े की एक बात बताऊँ। अभी बिस्मा ने आके बात की कि आसान सी शायरी थी, मैंने कहीं देखी तो मैंने कहा चलो इसको शामिल कर लेते हैं। आपको पता है कि कभी कभी हमारे पीछे रह जाने की वजह क्या होती है? हम पीछे रह जाते हैं जिंदगी में, लोगों से, कॉम्पिटिशन्स में, बहुत सारे मामलात में। उसकी अक्सर वजह ये होती है कि हमने हमेशा आसान ऑप्शंस को चुना होता है, हमने हमेशा आसान रस्तों का इंतखाब किया होता है। जब हम आसान चीज़ों का इंतखाब करते हैं, आसान रस्तों का इंतखाब करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं मुश्किलों से, चैलेंजेस से, कठिनाइयों से घबराते हैं, तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हमारा सीखने का अमल होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ जितनी आसान होगी उसमें फेलियर के चांसेस उतने कम होंगे, उसमें नाकाम होने के चांसेस सबसे कम होंगे। कभी आपने वीडियो गेम देखी है, कोई खेली है? आप जब कोई वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो उसके अंदर बाज़ुकात ना लेवल्स होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं। एक होता है ईजी, एक होता है नॉर्मल, और एक होता है हार्ड। मैं एक दौर था कि कंप्यूटर हुआ करता था, कंप्यूटर में एक गेम आया करती होती थी, आई थिंक शायद विंडो एक्सपी की बात है, तो उसमें एक विंडो, उसमें एक गेम हुआ करती थी, चेस, शतरंज एक गेम हुआ करती थी। और मैं हमेशा उस खेल को सबसे इजी मोड के ऊपर रख के खेला करता था, क्योंकि इजी मोड पे मैं हमेशा जीत जाता था। मैं जब भी उसको नॉर्मल या हार्ड के ऊपर रखता होता था, तो हमेशा पांचवी छठी बारी में ही मुझे हार मानना पड़ती थी, चेकमेट कर देता था मुझे मेरा कंप्यूटर, क्योंकि वो बड़ा प्रो लेवल था, वो बड़ा प्रोफेशनल लेवल था। मज़े की बात ये कि मैंने कई साल वो गेम खेली, लेकिन हमेशा ईजी लेवल पर खेली। इजी लेवल पे खेल खेल के कहीं ना कहीं हम खुद को तो ये तस्कीन दे रहे होते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम कुछ भी सीख नहीं रहे होते, क्योंकि हमारे सीखने का प्रोसेस असल में तब शुरू होता है जब हम नाकाम होते हैं। जब हम नाकाम होते हैं तो फिर हम पहले से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, हम कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, कोई नई सोच, कोई नया सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसी असना में हमारा जहन जो है वो फिर तेज़ी से काम करता है, मुख्तलिफ रस्तों को निकालता है, ढूंढता है। हम गिरते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन साथ साथ उसे क्या कहते हैं ना कि पक्के होते जाते हैं। और जू जू हम पक्के होते जाते हैं, फिर हम जब गिरते हैं तो हम टूटते नहीं हैं। जितनी कच्ची चीज़ होती है ना, वो जब जब गिरती है तो वो टूटती है और टूटकर बिखरती है, लेकिन जितनी पक्की चीज़ होती है, वो एक दो बार या हल्के फुल्के गिरने से तो कभी नहीं टूटती, ना ही उसको कोई तरेड़ आती है। कुछ दिन पहले मैं खुद अपनी ज़िंदगी पर गौर कर रहा था, मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ आसानियों की आदत पड़ गई है, और इन आसानियों की वजह से शायद ज़िंदगी एक अजीब से कांस्टेंट मोड पे आ चुकी है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि शायद जो हैपनिंग हो, जो कुछ बड़ा हो, जो थोड़ा हटके हो, शायद उसकी वजह ये है कि एक ख़ास कंफर्ट जोन में ख़ुद को कैद कर लिया है। कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा शायद मैं नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से मैं मुश्किल में पड़ूं। कभी कभी इस किस्म के सवालात ख़ुद से करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या मैंने ख़ुद को मुश्किल में भी डाला? क्या मैंने अपना भरपूर पोटेंशियल यूज़ किया? यकीन जानिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपना ज़ाती पोटेंशियल यूज़ ही नहीं करते। कभी डर से, कभी खौफ से, कभी मसलहत से, हमेशा सेफ़ प्ले करने की कोशिश करते हैं, हमेशा इजी इजी करने की कोशिश करते हैं, और उसी इजी इजी में ज़िंदगी का सत्यानाश कर देते हैं, अपने आप का सत्यानाश कर देते हैं। ग्रूम ही नहीं कर पाते हम लोग, ग्रो ही नहीं कर पाते। जिस शख्स ने ज़िंदगी में जितने ज़्यादा ठुड्डे खाए होते हैं ना, उसके लिए ज़िंदगी के मानी और मंजिलों तक पहुंचना एक और लेवल का होता है। बहरहाल, यूं तो ज़हन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि किस बात को बकायदा मौजू बना के आगे चला जाए। तो अगर आप आते हैं प्रोग्राम में और आके कोई बात करते हैं, कोई बात से बात निकलती है, तो भी ठीक है। अदरवाइज आप मेरी की हुई किसी भी बात का कोई मौजू बना के उसके मुतल्लिक अगर आपकी कोई राय है तो आप आके दे सकते हैं, कह सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं। मेरी किसी बात से अगर कोई इख्तलाफ हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई राय हो, कोई कमेंट हो, तो आए आके दीजिए, बात कीजिए। बात करेंगे तो बात होगी। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी। ज़या भाई, कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ?
1: आप पहचाने?
0: रिमशा
1: जी, बिल्कुल। आप कह रहे थे कि मैं पहचानता नहीं हूँ आपको। देखें, आपने मेरा नाम ही जिसे बता भी दिया।
0: क्या हाल है रिमशा आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ से।
0: क्या कहना चाहोगी?
1: मैं ये कहना चाहूँगी, आप देर से आए फिर भी कमाल कर दिया आपने शुरू के अंदर। मैं तो वैसे भी मेरी उम्मीद टूटने लगी थी कि आज जो है ना ज़िया भाई छुट्टी मारेंगे।
0: नहीं बजी थी,
1: रेडियो बंद ही करने लगी थी, तो अचानक से मुझे था ना आपका बीजीएम सुनाई दिया। मैंने कहा ज़िया भाई आ गए, अब तो बंद नहीं करूंगी।
0: ठीक हो गया
1: और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: और अभी आप ही आई थी, उन्होंने बात की ना कि भाई ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफ से दूर चले जाते हैं ना, जिनके पीछे हम पहले भाग रहे होते हैं, जिनके हम मतलब जिनसे हम मोहब्बत कर रहे होते हैं, जिनसे जिनके साथ हम जुड़े होते हैं, वो हमसे दूर भाग रहे होते हैं, हमसे दूर बिछड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहीं और लग जाते हैं ना लाइफ के अंदर, तो फिर वही जो हमसे दूर गए होते हैं, बिछड़े होते हैं ना, फिर वही लौट के वापस आते हैं। मैंने उनको देखा भी हुआ है, रोते हुए भी, तल्ले करते भी देखा है।
0: फिर उनको कदर होती है हमारी,
1: फिर उन्हें कदर होती है जब उन्हें हम,
0: फिर उन्हें हमारी कदर होती है, या वो खुद किसी और जगह से ठुकराए जाने के बाद हमारे
1: ठुकराए जाते हैं। जब उन्हें ठोकर मिलती है ना, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ मतलब जिस शख्स के पीछे वो भाग रहे होते हैं, जब वो उसे मतलब वो अहमियत वो नहीं दे रहा होता ना, वो लिमिट नहीं दे रहा होता, वो वक्त नहीं दे रहा होता, तो उसे पता चलता है कि हाँ ऐसा कोई इंसान था जो मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे टाइम देता था, फिर वो उसकी तरफ लौट के वापस आता है। मगर
0: एक बात बताओ कि कोई ऐसा शख्स हो हमारी जिंदगी में जिस पर हम अपनी तमाम वफाएं लुटाएं, जिन पे हम अपनी तमाम मोहब्बतें लुटाएं, जिनके ऊपर हम अपना वक्त इन्वेस्ट करें, जिनके ऊपर हम अपनी सारी एनर्जीज को इन्वेस्ट करें, लेकिन वो शख्स किसी और चीज़ के लिए या किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी और शख्स के लिए हमें नज़रअंदाज करके, हमें रद्द करके छोड़ के चला जाए, लेकिन फिर जिस चीज़ के लिए वो गया था वहाँ से भी वो खुद रद्द कर दिया जाए, और फिर जब वो हमारे पास आए गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, माफ़ियाँ मांगता हुआ, तो ऐसे शख्स को वापस जिंदगी में कबूल कर लेना चाहिए
1: मेरे ख्याल से। भाई अगर मैं आपको अपनी, मैं अगर अपनी ही लाइफ के मुतालिक बताऊं, तो ऐसा अगर मैं बिल्कुल कभी नहीं ऐसा करूंगी। मेरी लाइफ में ना ऐसा भी हुआ था, कोई ऐसा था जो लौट के वापस आया था, लेकिन उसे मैंने दोबारा नहीं, उसे मैं अपनी दोबारा लाइफ में लेके नहीं आना चाहती थी बस। क्योंकि जब एक बार इंसान को ठोकर लग जाती है ना भाई, और एक बार इंसान को इज्जत हो जाती है, तो फिर वो इंसान जब तड़प रहा होता है, जब उसे उसकी इंसान की जरूरत होती है, तो वो उसको इग्नोर कर रहा होता है, जैसे कि उस इंसान की कोई नीमत ही नहीं है, उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। उस वक्त वो समझ क्यों नहीं रहा होता, जब वो इन सब कहते हैं कि जब हम इंसानों के पास होते हैं तो वो हमारे।
0: अच्छा, इस बात का आपने

0: उनके लिए दोबारा नो होती है या कहीं ना कहीं उनको कोई स्पेस दी जा सकती है?
1: हाँ, अगर वो इंसान दोबारा, अगर मैं तो यही कहूँगी कि दोबारा उसे ना, उसे दोबारा नहीं देनी चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। फिर उसे दोबारा मौका मिल जाता है आपके जज्बात के साथ खेलने का, फिर आपको छोड़ के जाने का, फिर तकलीफ देने का, मैं ये नहीं समझती कि इसको दोबारा आपके साथ होना चाहिए अटैच, बिल्कुल नहीं।
0: चलें ठीक है रिमशा, आपकी बात, आपकी राय हम तक पहुंच गई।
1: इंसान अगर मौका देना चाहे, अगर उसे अच्छा लगता है तो वो दे, लेकिन दोबारा नहीं लाना चाहिए।
0: ठीक है रिमशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
0: अल्लाह हाफिज। अगर कोई शख्स वापस आपकी ज़िंदगी में लौट के आना चाहे तो क्या उसको वही स्पेस, वही जगह, वही मुकाम या वही मर्तबा दिया जा सकता है, या टोटली रिजेक्शन? या कभी कभी ये भी तो मुमकिन है ना कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, मुकाम दे देते हैं। हाँ, वो पहले जैसा मुकाम नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी खाने में फिट कर ही देते हैं।

क्या ख्याल है आपका, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? वो क्या खूबसूरत एक नज़्म है ना, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, अब वो मोहब्बत नहीं रही, अब वो मोहब्बत, वो वफाएं, वो एनर्जीज, वो अटेंशन, वो प्योरिटी, वो अब मुझसे ना मांगो, अब मैं वो सब कुछ नहीं दे सकता। पहले की बात और थी, पहले के मामला और थे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तलिस्म, रेशमों अतलसों कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग।

खैर बातचीत के सिलसिलों को हम थोड़ी देर में यहीं से जोड़ते हैं। एक बड़ा ही हैवी हार्टेड किस्म का गाना है। बड़ा ही कोई शदीद किस्म का गाना है ये सुनते हैं और इसको सुन के किसी खास वक्त किसी मुकाम किसी जगह पे पहुंचते हैं।

0: और उसके ख़त्म होने के बाद दोबारा वापस यहीं पे आके
1: एक मेरा यार
0: इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें एफएम 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।
1: मेरा सच है।

0: अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ।
0: शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: बात जी आपकी दुआएं हैं तो बहुत अच्छा। माशाल्लाह सुन ले आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है जी।
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो गलती होती है वो क्यों होती है? जो किसी को छोड़ के हम चले आते या कि कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो दोबारा जब वो आता है तो हम पे वो इज्जत नहीं रहती उसकी हमारी निगाह में।
0: ठीक है।
1: वो लाख बारी जो मर्जी कहे लेकिन वो इज्जत नहीं रहती। तो वो तो कहेगा मुझे एक चांस दो अब मैं ठीक चलूंगा, लेकिन ये कुछ थोड़ी सी नेकी हो उसकी जो उसको याद हो कि ये इसने कभी मेरे साथ की है, हो सकता है ये सोच के वो माफ कर दे उसको।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: वो उसके जो है ना साहब वो जो काम है वो याद आए कोई कभी किसी टाइम पे इसने मेरे साथ अच्छा भी किया था।
0: बिल्कुल ठीक।
1: सूरत से अगला दिल को जो है ना मोम हो सकता है। वैसे तो जब कहते हैं जो एक बार छोड़ जाए ना उसके मगर नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
1: नहीं मेरा मतलब यही कहने का जो एक पर तमाद किया फिर दूसरे नहीं करना चाहिए। जो एक दफा छोड़ दे ना बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा उसके दिन। मेरा कहने का ये मतलब है।
0: बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया।
1: और मैंने जो जिंदगी में एक नरमा ऐसा देखा था तो जो बात थी ना उसने ना उसके ने कहा ये भाई ये तुम ले जाओ तो इतनी बात मेरी याद रखना ये मेरी जिंदगी में ये मेरा नहीं ना हुआ तो होना तुम्हारा भी नहीं। वो रिजल्ट सामने आया था जो उसका नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं किसी का होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: ये बहुत पुरानी समझदारी वाली नजर के अजमाई बात हुई।
0: बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया शहजाद भाई। बड़ी अच्छी बात।
1: मेरे पास जो मेरे पास बातें होती है ना जी ये मेरी जिंदगी के साथ गुजरी होती है तजर्बा अफ्तार।
0: क्या बात।
1: ये मैं वो ही बात बताता हूँ आपको जो हमने जिंदगी में देखी होती।
0: शहजाद साहब फिर आपकी तो क्या ही बात है ना, आप तो फिर कमाल करते हैं।
1: क्या बात, आप भी कमाल करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा।
0: मुझे तो पैसे मिलते हैं ना कमाल करने के
1: तो हमें
0: आप तो मुफ्त में ही कर देते हैं।
1: आप जो देखो जो भी आदमी आता है ना जो भी जब वो बात करता है ना वो खुशी से करता है कि मैं ऐसी बात करूं कि खुशी मिल जाए।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: आप खुशी देते हैं हम इतने में खुश है हमारे वो ही पैसे करोड़ों।
0: चलें बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत
1: शुक्रिया
0: आपके लिए
2: दुआएं।
0: वालेकुम अस्सलाम अनिला जी, क्या हाल है आपका? ठीक है?
2: सब थोड़े जाऊंगे पहले ही हो गया। मैंने तो कहना था मैं आज से बात कर।
0: अच्छा तो आप गुले आरजू बात कर रही
2: हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुले आरजू बात कर रही हूँ मैं।
0: क्या कहना चाहेंगी अनिला जी?
2: क्या कहना चाहूंगी, शायरी तो आपने बड़ी जबरदस्त पढ़ी थी फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूम रहा था। और अभी जो कहा थी कि हम जिनके पीछे भाग रहे होते हैं वो आगे किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं फिर जब वहाँ से किक पड़ती है तो फिर वो वापस हमारी तरफ आते हैं तो उनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कुछ ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिन्हें वाकई मौका नहीं देना चाहिए।
0: जैसे कि
2: आजकल की जैसे चल रहे हैं ताल्लुकात।
0: आजकल तो हर तरह के ताल्लुक चल रहे हैं।
2: नहीं जैसे कि कोई दो चाहने वाले होते हैं या दोस्त होते हैं कोई खास, और खास दोस्त जब आपको छोड़ के किसी और के पीछे भागा हो तो जब वो वापस आए तो फिर उसका एतबार नहीं रहता।
0: अच्छा।
2: फिर दिल में वो एक मुतमीन होने वाली जगह चीज नहीं रहती। कुछ पता नहीं कल को फिर ये कहीं इधर उधर डावाडोल बंदा।
0: अच्छा जैसे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं एक वक्त के बाद कि उनमें ना जैसे बहन भाइयों का रिश्ता होता है, बहन भाइयों का रिश्ता जब तक बहन भाइयों की शादियां नहीं होती ना तो बहन भाइयों की बॉन्डिंग आपस में बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही बहन भाइयों की शादियां होती हैं वो खुद बीवी बच्चों वाले होते हैं और अपने ख़ानदान वाले होते हैं तो फिर यही जो बहन भाई होते हैं इनके आपस में फिर क्लेश शुरू हो जाते हैं, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, फिर वही जो बहन भाई होते हैं उनके तरह तरह के मसले मसाइल और चीज़ें। और फिर आपने देखा है कि हमारे जितने भी खुशियां और गमियां होती हैं इसके अंदर रूठने और मनाने के सिलसिले भी चल रहे होते हैं, फलानी बहन नहीं मान रही तो फलाना भाई नहीं मान रहा तो फलाने ऐसे ऐसे ऐसे, और ये फिर सिलसिले ऐसे होते हैं कि होते भी खून के रिश्ते हैं, ना छोड़े जाते हैं और ना ही साथ निभाई जाती है। तो ऐसे में अगर कोई बहन भाई बाजुकात ऐसे होता है कि वो बिल्कुल आपसे ना कता ताल्लुक कर लेता है, वो कहता है अब ये मेरी बहन थी या भाई था, ये अब जिए या मरे, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं ये मर भी जाएगा ना, बाजू का ऐसी भी सिचुएशन थी ये मर भी जाएगा ना तो मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा, और मैं मर भी गया ना तो इसको मेरा मुंह ना देखने देना, इसको ना मेरी। तो ऐसी सूरत में कभी कभी ऐसे होता है कि दोबारा चांसेस भी बन जाते हैं कि दोबारा से वो सुलह हो जाए, सफाई हो जाए, तो क्या ऐसी सूरत में वापस वो बहन भाइयों को मुकाम दिया जा सकता है? और कभी कभी ये चीज़ होती है कि सारी ज़िंदगी चलती रहती है जोड़ तोड़। हाँ, जोड़ तोड़। कुछ फुफुएँ, कुछ मामुएँ, कुछ ताइयाँ, कुछ चाचे, कुछ मामे, कुछ अंकल आंटियाँ ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी कभी उनके साथ जोड़ रही होती है, कुछ टूट रही होती है, जोड़ रही होती है, टूट रही होती है। आजकल हमारी उनके साथ बोलचाल नहीं है, आजकल फिर हमारी उनके साथ बोलचाल है। तो हम कभी कभी कुछ चीज़ों को, कुछ मौजूआत को सिर्फ एक मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि भाई अगर कोई हमें छोड़ के चला गया तो हम वापस उसको नहीं मुकाम देंगे। तो क्या बहन भाइयों के साथ भी ऐसे है कि अगर कोई रूठी हुई बहन या कोई रूठा हुआ भाई वापस आता है एक अरसे के बाद आता है तो क्या हम उसको नहीं वो स्पेस देंगे, वो जगह देंगे?
2: बिल्कुल देंगे जी,
0: देनी चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल देनी चाहिए, वो रिश्ता ही ऐसा है, खून का रिश्ता है। और वो कहते हैं ना माँ से नाखून क्या, नाखूनों से माँ क्या जुदा नहीं होते, वो वाली बात। तो मतलब ये नहीं होता, ऐसे ताल्लुक ऐसे मतलब रिश्ते जो हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते, कुरान में भी इसका हुक्म नहीं है रिश्तों को तोड़ने का। जहाँ आपको मौका मिलता है कि थोड़ी देर नाराजगी रही है, जहाँ आपको मौका मिलता है मना लीजिए, मान जाइए। तो ये रिश्ते इसी तरह ही चलते हैं और इनको चलाना पड़ता है, रिश्तों का तकद्दुस आना चाहिए, करना पड़ता है।
0: तो अगर हम इस तरह के किसी रिश्ते के लिए गुंजाइश निकाल सकते हैं तो फिर हम बाकी रिश्तों के लिए गुंजाइश क्यों नहीं निकालते, वहाँ पे हम क्यों टोटल फुल स्टॉप लगा देते हैं?
2: नहीं नहीं, रिश्तों के लिए तो निकालनी पड़ती है, निकाल लेनी भी चाहिए। आप देखें वहाँ जाके इनका हमसे सवाल किया जाएगा, जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो हमसे सवाल किया जाएगा, बहन का क्या, भाई का क्या किया, वो तुम्हारी फुफो थी, वो तुम्हारी चाची थी, तुमने उनके साथ क्या, ये सब हमसे सवाल होंगे।
0: नहीं, सवाल तो फिर बाकियों से भी मुतालिक होंगे।
2: नहीं, वो उनके उनके जवाब दे वो और बात होगी, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, जिनसे हमारा कोई खास ताल्लुक नहीं है, जस्ट एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, अगर एज अ इंसान उसके लिए हमने अच्छा ही किया, अगर हम बुरा करेंगे तो उसके पे जवाब दे डेफिनेटली हम होंगे। ठीक है, हमें जवाब देना है उसका भी, एक अच्छे दोस्त का या अच्छे इंसान के साथ या एक नेक इंसान जिसे हम जानते भी नहीं थे, अगर वो किसी वक्त मुश्किल में था और हम उसके पास से गुजर गए और उसका साथ नहीं दिया, देना चाहते थे, दे सकते थे और फिर भी नहीं दिया तो उसका जवाब भी है, डेफिनेटली है कि हमसे जवाब मांगा जाएगा उसका सवाल। आप ये देखें कि आपके दरवाजे के बाहर एक बिल्ली कुत्ता ही आके बैठ जाता तो वो भी फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाता कि इसको भूखा या प्यासा नहीं जाने दो,
0: बिल्कुल
2: इसको ऐसे मत छोड़ो। तो रह गए जो बास ताल्लुकात ऐसे होते हैं जो ये दुनियावी कुछ ड्रामा टाइप जो ताल्लुक बन जाते हैं ना, मैं उनमें बात कर रही हूँ कि उनमें नहीं, उसमें कोई ऐसी इतनी वो नहीं होती कि आप उनको बार बार चांस देते रहें। आपको एक दफा कहते हैं ना, एक दफा जो डसा जाता है ना, फिर उसे समझ आ जाती है।
0: अगर एक आरजे है, एक आरजे है और वो नाराज होके रेडियो छोड़ के चला जाता है, तो क्या दोबारा उसको उस रेडियो पे दोबारा आना चाहिए?
2: यहाँ पे मैं कहूंगी कि कुछ लोग या बातें या ताल्लुक या जगह ऐसी होती है जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपकी कदर नहीं होती फिर वहां जाके क्या करना, आप अपनी कदर मत गवाएं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको अहमियत दी जाती है, आपको कदर दी जाती है, आपकी कदर की जाती है, तो आपको चांस वो दे रहे हैं कि आए वापस, या उसको बुलाया जाता है और वो आते हैं वापस, और उनकी इज्जत उसी तरह से की जाती जैसे करनी चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल उन्हें सोचना चाहिए।
0: यानी अगर अगर आप कोई इदारा छोड़ते हैं किसी भी वजह से, कोई भी इदारा छोड़ते हैं जहाँ पे आप कोई नौकरी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, आप वो छोड़ते हैं और किसी भी वजह से छोड़ते हैं, खुद फटा करके छोड़ते हैं, वो लोग निकाल देते हैं, तो अगर आपको दोबारा वो ड्यू रिस्पेक्ट मिले या आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो आप वापस जा सकते हैं।
2: हाँ, अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस तरह से और आपको रिस्पेक्ट दे के बुलाया जा रहा है, और नेक्स्ट होते हैं ना वो अपने अपने वो सारी डिसाइड कर ली जाती हैं चीज़ें, तो अगर उसमें आपको लगता है कि बेहतर है, तो मेरा ख्याल है गुस्सा ख़त्म कर देना चाहिए, नाराज़गी को ख़त्म कर देना चाहिए, मान लेना, माफ़ कर लेना, ये ज़्यादा बड़ापन है, आला ज़र्फ़ी है ना।
0: अनिला जी, आप खुद क्यों नहीं प्रोग्राम करती हैं? आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप आपको चाहिए कि आप आए ना रेडियो किया करें। आप
2: भाई, यहाँ पे वो जो नए लोग आप भर्ती करें या जिनको बुला रहे हो, मैं आपने 28 साल की उम्र पे कह दिया,
0: आप कह दें कि मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ, रातें निकाल के
2: रातें फिर भी टॉक्स में फौरन से पहले
0: नहीं, आप कह दें कि मैं तो सोई भी थी रातों को, तो मैं सोती थी, वो तो आप उसको कंसीडर ना करें ना।
2: हाँ, उनको कंसीडर ना करें ना,
0: तो फिर आप वो 28 से कम ही निकलेंगे रातें का,
2: आप लोगों ने
0: रातें काट के, तो तुझे 28 तो बहुत थल्ले ही हो गए फिर,
2: है ना। ये तो बात है वैसे, हाँ गुड्डू
0: तो कर लेने ना असि फिर, कोई आप आ जाए, आप कह दें कि मैं 16 की हूँ,
2: आपके लिए बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, आपसे बात करके, और जो आपके दोस्त सुन रहे हैं आतिफ, उनके लिए भी बहुत सी दुआएं।
0: चलें, बहुत शुक्रिया अनिला जी।
2: मैं ही कह के जाऊंगी दो चार लाइनों में, वो जो अभी हमारी क्या कॉलर आई थी बड़ी अच्छी, रिमशा, वो जो कह रही थी कि चांस, उनके लिए ना रिमशा ऐसे भी होता है ना,

0: जाना ही तू छद के अखियां मेरी भर के तेनू अपना बनाया सी मलन लड़के। कैसा फिर ऐसा भी हो जाता कभी कभी।
1: क्या बात है क्या बात है। अभी ये आपने क्या लिरिक्स बोले थे, तेरी फोटो लाई ऐसी एसी ला के। मुझे बिल्कुल ऐसे लगा है जैसे आपने तेरी फोटो नू ऐसी एसी ला के कुछ इस तरह कुछ।
0: तेरी फोटो रखी मैं सीने ला के,
1: एसी ला के,
0: सीने ला के।
1: अच्छा सीने ला के, ठीक है जी समझ आ गया।
0: एसी नहीं लानी फिर फोटो, मैं भी आदत पै जाएगी फिर उड़ उड़ के जाएगी उधर एसी वर।
1: चले नीला जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
0: बहुत सी दुआएं हो सबके लिए आपके।
1: अल्लाह हाफिज। एक्यू का मैसेज आया है, रिप्लाई आया साथ ही फौरन, कहते हैं अनीला जी का शुक्रिया। हैं क्या बात है बेटे, बड़ी जल्दी रिप्लाई की है, अब तो बड़ी जल्दी रिप्लाई की है। ऐसे करना होता तो पहले बता दिया करो। अच्छा जी कुछ मज़ीद मैसेजेस को देखते हैं। हमारे साथ सिद्रा हैं और कहती हैं कि मेरे पसंदीदा कप में हल्की सी दराड़ पड़ चुकी है, मेरे पसंदीदा कप में हल्की सी दराड़ पड़ चुकी है, मगर मैं रोज़ाना उसमें चाय डालकर बड़ी एहतियात से उसे अपने हाथों में उठा लेती हूँ। किसी दिन ये मेरी एहतियात के बावजूद मेरे हाथों में टूट जाएगा, मेरी मोहब्बत उसे तोड़ देगी, क्योंकि लाजमी नहीं हर जगह मोहब्बत ही काफ़ी हो। अच्छा ठीक है, मर्जी है आपकी। ओके कुछ मज़ीद मैसेजेस को भी देख लेते हैं, शायद किसी ने कोई काम की बात कही हो। जुगनू सीनियर हैं, कहते हैं कि अनीला जी चाहत फतेह अली खान की याद आ गई। नहीं अनीला जी के बाल ऐसे तो नहीं हैं, ठीक बाल हैं उनके, चाहत फतेह अली खान साहब के ठीक हैं, माना कि उनके भी लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उनका जो हेयर स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है। अब ऐसे तो ना कहें ना आप जुगनू सीनियर, ये तो फिर गलत बात है ना। रिजवान राजपूत कहते हैं कि मैं आपको सुन रहा हूँ रावलपिंडी में, बहुत शुक्रिया, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। महजबीन कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया, मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंसान से ख़ता सरजद हो सकती है, बाज़ुकात कोई जो हमें छोड़ के गया, खा कोई भी रिश्ता हो, उसके हालात, उसकी मजबूरी, उसकी सोच ख्यालात क्या थे, ये समझना और जानना भी ज़रूरी है। आप किसी को अपनी अदालत में सफाई दिए बिना यकतरफा फैसला नहीं सुना सकते। मैं माफ़ करने पर यकीन रखती हूँ, एक से दो बार माफ़ करें, और अगर ये मुसलसल अमल हो तो फिर किनारा इख्तियार करें, लेकिन फिर भी कुछ रिश्तों में कभी कभी बार बार भी माफ़ किया जाता है, क्योंकि आप उनसे अलग ज़िंदगी नहीं जी सकते। अल्लाह अपने बंदों को मौत तक तौबा का वक्त देता है, तो फिर कोई इंसान क्यों इतना शिद्दत पसंद हो कि वो किसी की सुने ही ना, उसे मौका ही ना दे। क्या बात है, क्या ही बात है। माजबीन बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत सारी वो बातें जो मैं कहना चाहता था वो आपने अपने छोटे से मैसेज में खुद ही कह दी, थैंक यू सो मच। जुगनू सीनियर कहते हैं कि ज़िया भाई एक इंग्लिश की कहावत याद आ गई, इफ़ यू फूल मी वंस शेम यू, शेम ऑन यू, इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। मेरे ख्याल में सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, अगर उस इंसान को आगे से रिजेक्शन ना मिले तो वो कभी आपको याद भी ना करे। हम इंसान भी तो ऐसे ही होते हैं, हम भी तो अपने मालिक को, अपने क्रिएटर को, अपने खालिक को, अपने रब को जब मुश्किल पड़ती है, जब हम ठुकराए जाते हैं, जब हमारा बस चलना ख़त्म हो जाता है चीज़ों पर, तो फिर हमें भी रब याद आता है, फिर हम उसके आगे इल्तजाएँ करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वजीफे करते हैं, नमाज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें वो नफली इबादतें भी याद आ जाती हैं, फिर हमारी बाजू का तहज्जुदें भी लग जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मुश्किल में होते हैं। अब हमारे बस से बाहर गेम चली जाती है जब हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जब हम ठुकरा दिए जाते हैं, तो फिर हमें भी तो रब तभी याद आता है। लेकिन रब के हाँ, रब के दरवाजे तो बंद नहीं होते, हमारी आखिरी सांस तक बंद नहीं होते। और ये रब की ही सुन्नत है कि वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता है, वो हमेशा माफी का दरवाजा खुला रखता है, वो कभी भी किसी पे मुकम्मल तौर पे अपना दरवाजा बंद नहीं करता। ये अंबिया की सुन्नत है, ये रब की सुन्नत है, ये अल्लाह के खास बुजुर्गों की, वलियों की, बाबों की सुन्नत है कि वो माफ़ कर देते हैं। बड़ा तो वही होता है जो माफ़ कर देता है। फतह मक्का का मौका हो और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, तारीख में हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो लोग जिन्होंने कोई भी कसर ना छोड़ी हो आप पे जुल्म करने की, जुल्मों की इंतहा करने की, जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ खुली बगावत की हो, आपकी खुली मुखालफत की हो, आपसे बाकायदा जंगें लड़ी हों, अहद शिकनी की हो, उन सब को खुली माफ़ी दी गई। तो हमारा दीन, हमारा रसूल और हमारा रब वो तो कुछ और कहता है। हम ही हैं जो एक या दो बार कोई हमें ठुकरा के चला जाए, हमारी मर्जी के मुताबिक ना चले। मर्जियां ही होती हैं ना ये। हम चाहते हैं कि कोई शख्स हमारे साथ इन इन शरायत पर जुड़ा रहे, लेकिन एक शख्स हमारे साथ उन शरायत पर हमारे साथ नहीं जुड़ता, तो हम उसे छोड़ देते हैं कि ठीक है ऐसे तो फिर ऐसे ही ठीक है, अब तुम्हारा हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं। और हम इस कदर शिद्दत के साथ भर जाते हैं कि हम उसको दोबारा कबूल करना भी नहीं चाहते कि वो लाख गिड़गिड़ाए, माफ़ियाँ मांगे। हम कहते हैं नहीं जी, हमारी अना, हमारा तकब्बुर, हमारी मैं इतनी बड़ी होती है कि हम कहते हैं क्योंकि तूने मुझे ठुकराया, मुझे छोड़ दिया। हम अपने आप को एक ऐसी अना की उस बुलंदियों पर ले जाते हैं, उन इंतहाओं पर ले जाते हैं कि हम अपने आप को न जाने क्या चीज़ समझने लग जाते हैं। और हम में से अक्सर लोग बाज़ुकात लोगों को उनकी छोटी छोटी ख़ताओं पे भी माफ़ नहीं करते। ठीक है कुछ बड़े मामलात होते हैं, उनको भी मसलहत से देखना पड़ता है, लेकिन अमूमी तौर पे इंसानों का रवैया क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे हमने लोगों पे रिजेक्शन के ठप्पे लगा दिए होते हैं। हमने तो उनके ऊपर कबूलियत के दर ही बंद कर दिए होते हैं कि ना भाई, तू और तेरी औकात नहीं है कि तू अब दोबारा मेरे इस घर के दर पे आ सके। बहरहाल कॉल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जम खैरियत से आप?
1: जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
2: इरफान अली राजपूत बात कर रहा हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से।
1: जी इरफान साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: उस्मान
1: साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: माशाल्लाह जानजम आपका माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है। आई गेस के सेकंड थर्ड टाइम सुन रहा हूँ आपका शो और बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी शायरी, आपका अंदाज बहुत कमाल है।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: और आप बात कर रहे थे आई थिंक सो रिलेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि देखें जी, वो जात कितनी करीम है कि हमने जितने भी गुनाह किए हो ना, वो हमें माफ कर देती है। तो हम कौन होते हैं किसी को माफ कर देने वाले या ना करने वाले?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: देखें, छोटी सी जिंदगी है, इसको हंसी खुशी गुजारें। और देखें, आगे बात चल रही थी कि आगे जाके हमें इन बातों का मतलब हिसाब देना होगा, इसका जवाब दे होंगे हम लोग। मगर देखें, हम अपनी तरफ से 100% देते, मतलब हमें अपनी तरफ से 100% देना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक है।
2: अगले की नियत, अगले के काम, हमारी अपनी नियत साफ होनी चाहिए। वो कोई भी रिश्ता है, आपके दोस्त हैं, आपके मतलब बहन भाई या कोई भी रिश्ता है, उसमें होता है। देखें जी, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे टकराव लाजमी होता है। तो मेरा ये मानना है कि देखें, माफ कर देना चाहिए, और मतलब तो दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, कोई भी है बस उसको छोड़ देना चाहिए उस चीज को।
1: बड़ी खूबसूरत बात उस्मान साहब, और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे?
2: थैंक यू सो मच। हाँ, एक शेर सुनाना चाहूँगा
1: जी।
2: कि मोहब्बतों के हादसे अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं।
1: वाह वाह।
2: मोहब्बतों के हादसे अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तो मंजिल की बात करते हो जाना, लोग तो राहों में छोड़ देते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।
2: एक और शेर मेरे जहन में आया, मेरे बड़े मोस्ट हमारे असमानोवन की याद से हैं, अल्लाह उन्हें मेरी के रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका शेर था कि इश्क में राहतें कम ज्यादा खसारे देखे,
1: वाह वाह,
2: और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे।
1: वाह वाह,
2: क्या बताएं कि कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहां दर्द हमारे देखे।
1: वाह, बहुत
2: अच्छे। और दिल भी गद्दार है, सुनता ही नहीं मेरी बात। दिल भी गद्दार है, सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया माली, तावीज भी सारे देखे।
1: क्या बात
2: दम
1: है।
2: दम का पानी भी पिया माली, तावीज भी सारे देखे।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: थैंक यू सो मच जानजुम, सलामत रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और बड़े मजे का शो होता है आपका, और जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है और उसके साथ आप जब बोलते हैं, कोई भी टॉपिक होता है उस पर आप डिस्कशन करते हैं, खुला जो आप करते हैं, बड़ा मजा आता है। बाकी जहाँ तक समझ आ रहा है, तमाम सुनने वालों को प्यार मोहब्बत भरा चाहत भरा खलूस भरा सलाम, और थैंक यू सो मच।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। जो मांग ले उसको दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे, बेसामान वापस जाओगे। सामान जमा ना करो, हुजूम से परहेज करो, तन्हाई को साथी बनाओ। मुफ्ती हो तब भी फतवा जारी ना करो, जिसे खुदा ढील दे रहा हो उसका कभी एहतसाब ना करो। बिला जरूरत सच फसाद होता है, कोई पूछे तो सच बोलो, ना पूछे तो चुप रहो। लोग लज्जत होते हैं और दुनिया की तमाम लज्जतों का अंजाम बुरा होता है। जिंदगी में जब सुकून कम हो जाए तो सैर पर निकल जाओ, तुम्हें रास्ते में भी सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। देने में खुशी है, वसूल करने में गम है। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे, चोरों में रहोगे तो खुद भी चोर हो जाओगे। साधुओं में बैठोगे तो अंदर का साधु जाग जाएगा। अल्लाह राजी रहेगा तो जग राजी रहेगा, वो नाराज होगा तो नेमतें भी जाएंगी। तुम जब अपने अजीजों, रिश्तेदारों, औलाद और दोस्तों से चिढ़ने लगो तो समझ जाओ कि रब तुमसे नाराज है। और जब तुम अपने दिल में दुश्मनों के लिए रहम महसूस करने लगो तो समझ लो कि तुम्हारा खालिक तुमसे राजी है। हिजरत करने वाले कभी घाटे में नहीं रहते।

0: किसी को खुद ना छोड़ना, दूसरे को फैसला करने देना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कभी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता, मखलूक अल्लाह को छोड़ देती है। ध्यान रखना, जो जा रहा हो उसे जाने देना, मगर जो वापस आ रहा हो उस पर कभी दरवाज़ा बंद ना करना, ये भी अल्लाह की आदत है। अल्लाह वापस आने वालों के लिए अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है। तुम ये करते रहना, तुम्हारे दरवाजे पर मेला लगा रहेगा। तुम बस ये करते रहना, तुम्हारे दरवाजे पर मेला लगा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं?
1: वहीद मुराद बलोच बात कर रहा हूँ जी।
0: जी वहीद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए ढेर सारी दुआएं।
0: क्या कहना चाहेंगे
1: आपसे? सबसे पहले तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं।
0: बहुत शुक्रिया। तो,
1: मरहूम नसीर बलोच साहब के दो अशआर आपकी नजर करने लगा हूं।
0: जी बताइए।
1: जुल्फ के सवरने में देर कितनी लगती है।
0: वाह वाह।
1: जुल्फ के सवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है।
0: ओए होए होए, कमाल।
1: आंख से दिल तक भला फासला ही कितना है।
0: वाह वाह।
1: आंख से दिल तक भला फासला ही कितना है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, कमाल हो गया, कमाल हो गया।
1: कांच का बदन लेकर पत्थरों पर चलता हूँ।
0: वाह वाह।
1: कांच का बदन लेकर पत्थरों पर चलता हूँ, किर्तियां बिखरने में देर कितनी लगती है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: आखिरी शेर आपकी नजर के, दुआ है कि मेरी बद्दुआ से बच।
0: वाह वाह।
1: दुआ है कि मेरी बद्दुआ से बच, सर्द आह भरने में देर कितनी लगती है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: खुश रहें, सलामत रहें। मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, लेकिन कल आज दूसरी दफा मिली आपके प्रोग्राम में।
0: बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। खुदा सलामत रखे आपको।
1: अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह,
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है जो भी कम ज़र्फ़ हो, औकात पे आ सकता है। इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख, बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है।

मौला हो मेरे मौला मौला। आमिरा खान है सियालकोट से, कहती हैं अस्सलामुअलैकुम ज़िया भाई, क्या हाल चाल है, नाइस शो, क्या बताऊं दिल का हाल। कभी कभी कुछ ना कहना ही कितना कुछ कहना होता है ना। सरदार सालिस मर्दान से कहते हैं कि अंजुम साहब आपकी सारी बातें हार्ट टू हार्ट होती हैं, कैसे कर लेते हो, प्यारा अंदाज आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम, बहुत शुक्रिया सालिस साहब, आप सुनते हैं पसंद करते हैं। असद अली लाहौर से कहते हैं कि आपका शो देख रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा कॉल कर रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे सावन मोहब्बत है क्या, आप दुआएं करते हैं मेरे पल्लू में, भला आजकल कौन किसी के लिए दुआ करता है, तू मेरे हर शख्स को अपनी पड़ी है मेरी आँखों में तू। रिजवान राजपूत कहते हैं कि लाहौर में आपको सनम भी सुन रही है, शुक्रिया सनम, लाहौर से सनम सुन रही है और न जाने किस किस के सनम कहां कहां से सुन रहे हैं। मुझे भी कुछ मेरे सनम सुन रहे हैं और पूछते हैं कि क्या उन रूहों में दोस्तों की रूहें भी शामिल हैं। जी हाँ शामिल है, मस्जिद भी तू गुड्डू मंदिर भी तू। ओके अस्मा कौसर सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम मेरे मौला। फराफ जाल कहती हैं बहुत अच्छा शो, खुश रहे आमीन। बिनते सदीक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जियान जम सर, अल्लाह ब्लेस यू आमीन, बहुत शुक्रिया, कुछ फूल भेजे हैं। हम तो दिल का हाल सुनाना ही हमने तो दिल का हाल सुनाना ही छोड़ दिया, जब देखा कि सुनने वाले सिर्फ लफ्ज सुनते हैं दर्द नहीं।

बेएतबार वक्त पे झुंझला के रो पड़े, खोकर कभी तो उसे पाकर रो पड़े। खुशियां हमारे पास कहां मुस्तकिल रहीं, बाहर कभी हंसे तो कभी घर आके रो पड़े। कब तलक किसी के सोग में रोएंगे बैठकर, हम खुद को कितनी बार ये समझा के रो पड़े। हाय, रोना भी जो चाहूं तो वो रोने नहीं देता, वो शख्स तो पलकें भी भिगोने नहीं देता।

आज जाते जाते दिल बड़ा उदास हो रहा है, दिल भारी सा हो रहा है, जी चाह रहा है कि अभी आपसे और कितने घंटे बात करूं। लेकिन वक्त की एक सबसे जालिम बात ये है कि जब आपका वक्त ख़त्म होता है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ माजी बन कर रह जाती है। आपका मेरा साथ यहीं तक था, मुलाकात होगी जुमे को रात 12 से 2, फिर हर मंगल और जुमे को रात 12 से 2 प्रोग्राम हरफे जुनू में आपसे मुलाकात होती है। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़िया अंजुम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मेरे मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। ख्याल रखिएगा, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की अशद ज़रूरत है। जा रहा हूँ, एक और अधूरी मुलाकात छोड़ के, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: अच्छा इन द सेंस कि बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते रहे हैं हुकूमत की फॉर्मेशन में माजी में भी, और अब भी हमने देखा कि बड़ा उनका तगड़ा किरदार सामने आया है। अगर इंडिपेंडेंस जिन्होंने आपसे रब्ता किया है अगर वो नून लीग के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या नून लीग इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर के हुकूमत बनाएगी या वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने देगी? एक बार फिर से दिल बड़ा करते हुए कि नहीं नहीं आप बना ले हुकूमत भाई क्योंकि आपके पास ज्यादा सीट है।
1: देखिए दिनेश ये सारी बातें अभी दे आर ऑल अंडर डिस्कशन, ठीक है, लेकिन हम अगर इस टेम्पलेट पे जाएं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम किया है तो हम भी उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ अभी सारी कोई बात हतमी तौर पर तय नहीं हुई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नेगोशिएशंस हैं, नंबर्स आर बीइंग क्रंच्ड एवरीवेयर, वोट्स आर बीइंग रीकाउंटेड इन पोलिंग स्टेशंस क्योंकि हर जगह पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत थोड़ा था, बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे लार्ज मार्जिन ऑफ विक्ट्री था। तो देखिए ये इलेक्शंस के नॉर्मल इलेक्शंस के ये फॉल आउट्स होते हैं। मेरे भाई न्याजी साहब ने एज यूजुअल इल्जामों की बारिश कर दी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं, तो मैं उनको कहूँ कि जी इस हमारी कोई डील नहीं हुई, अगर हमारी डील हुई होती तो हमारी लीडरशिप वहाँ पे कैंपेन ना करती, वहाँ पे कोशिश ना करती। न्याजी साहब कहते हैं कि हमें इजाजत नहीं मिली तो मैं उनको याद करा दूँ बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन के लिए वहां पे मौजूद थे, शाहिद खटक साहब पार्लियामेंट्री लीडर इन द नेशनल असेंबली इलेक्शन के लिए वहां पे मौजूद थे। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लें, पीएमएलएन के जलसे देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे देखें और पीटीआई के जलसे देखें, उन जलसों में क्राउड देख लें तो आपको बड़ा वाजह अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन से पहले जो माहौल था वो इलेक्शन के रिजल्ट पे और इलेक्शन डे पे उसकी अक्कासी थी। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। आपके वहां पे जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने क्या कैंपेन की, उन्होंने कितने जलसे किए, उन्होंने कितनी, वो भी तो वहां पे मौजूद थे ना, शाहिद खटक साहब भी मौजूद थे, और ये एनओसी की जो बात है एनओसी सारे लेके गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी 3 times प्राइम मिनिस्टर भी एनओसी लेके गिलगित बल्तिस्तान गए, एनओसी के बगैर वो भी नहीं गए।
0: सही बात है न्याजी साहब, नई बातें करें ना, पुरानी बातें क्यों, समर बिलोर साहब कहती मैंने नहीं सुननी पुरानी बातें, अब कुछ नई बातें करें। ये मुझे बताएं कि ये जो अब गिलगित बल्तिस्तान का मामला है न्याजी साहब, ये 15 तारीख तक 16 तारीख तक चला गया है क्योंकि अभी कितने 5 इंतखाबी हलकों के जो नतज है वो रोक दिए गए हैं, अभी 15-16 तारीख को ये जो नतज सामने आएंगे ये भी एक नया ट्विस्ट है कि ये एक नॉर्मल सी बात है?
2: अच्छा देखिए मुझे एक तो बीनेश बड़ी अच्छी बात है कि आपके प्रोग्राम का नाम सीधी बात है और आज आपने बहुत वैसे भी करती हैं, आपने बहुत सीधी बातें की हैं, आपने कह दिया है कि गवर्नर आपका होगा, चीफ मिनिस्टर आपका होगा, जिस तरह पहले हुआ, तो चीज़ें तो सारी काफ़ी सारी आपको ही पता है, आम आदमी को भी पता है कि क्या होने जा रहा है। अभी मैं अपनी बहन के सवाल, दोनों बहनों के सवाल का जवाब दे दूँ कि देखें 7 सीटें आपकी हैं वुमेन सीट्स हैं और 2 सीट्स हैं टेक्नोक्रेट्स की, ठीक है, अब ये किसको जाएंगी? अब एक पार्टी ना और साथ जिसके साथ जयन कर रहे थे उसको भी आपने भगा दिया, तो हमारे बंद जो जीते हैं दूसरा वो काजम वो भी इंडिपेंडेंट है और एक MWM का जीता है, 3 सीट वो रिजर्व सीटें छीनी थी, इनके दोनों जो पार्टियां हैं ये ले जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ जी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि एक चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा, एक गवर्नर भी बन जाएगा, और अभी ये दोनों बहनें ये भी कह रहे हैं कि ये हतमी बातें नहीं हैं, ये हतमी बातें हैं, ये अच्छा। ये प्री मेच्योर चीज़ें नहीं हैं कि आपको काफ़ी चीज़ों का पता है कि जिस तरीके से सीटें होंगी, हाँ ये चीज़ छुपी तो नहीं है। अब ये कहें कि ये रिज़ल्ट जो रुके हैं इतने सेंसिटिव एरिए हैं, दो देखिए हम सबसे पहले ये भी पाकिस्तानी हम भी हम सारे लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत दिफा ये पैरामाउंट है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव हैं जिनके लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी होती हैं। जहां तक आप कहते हैं कि जी हमने बड़ा प्रोग्रेस पे और अपने कारकर्दगी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिया है, तो वो कहते हैं कि जी हमने बड़े जलसे किए, तो कारकर्दगी पे अगर वोट होते तो मैंने तो नहीं कहा, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर

Merci.

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी बड़ी सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा।